0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को

0: और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य की जल आवश्यकताओं और शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय के 2 दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में कल शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने जल संरक्षण से जुड़े उपाय अपनाने का आह्वान किया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्ष यान है और ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव का एक महत्वपूर्ण उपाय है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा यह दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल उपकरण और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। 6 टन से अधिक बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। भोटे कोशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल के भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और वित्तीय प्रणाली की बेहतर सुदृढ़ता दर्शाता है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। पहली ICC विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi yesterday chaired the valedictory session of the 2-day National Departmental Summit on Water, organized by the Ministry of Jal Shakti. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. The Prime Minister appreciated the intensive two-day deliberations and emphasized that the

রাত বিনা শুনছেন 100.1 FM গোল্ডে প্রভাত বিনা 100.1 FM

কানে কথায় গোল্ডেন সময়, আপনি শুনছেন 100.1 FM গোল্ড, 100.1 FM গোল্ড।

जी हाँ दोस्तों, आपकी दोस्त सविता हाजिर हो चुकी है एफएम गोल्ड यानी खरा सोना पर लेकर आपका हमारा सबका पसंदीदा कार्यक्रम सुहानी सुबह। जी हाँ, बीत गई तारों वाली सुनहरी रात, याद आई फिर वही आपसे हमारी प्यारी सी बात। खुशियों से हो हर पल आपकी मुलाकात, इसलिए मुस्कुराते हुए करें चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत।

0: मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत मेरा नाम याद रखे।
1: जी हाँ दोस्तों, आई एम श्योर कि आपको मेरा नाम याद होगा। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, बिल्कुल दुनिया में सिर्फ इसी की तो ज़रूरत है और सब इसी को चाहते हैं। दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है आज के कार्यक्रम FM गोल्ड पर सुहानी सुबह की। जी हाँ, बारिश हो रही है, लगातार हो रही है, रात में भी हुई है, तो बस ये सोच समझकर आपको घर से बाहर कदम निकालना है कि कैसे हम अपने दिन का प्लान करें। लेकिन दिन का प्लान आप करते करते हमारे कार्यक्रम को सुनते जरूर रहिएगा। जी, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सविता। चलते हैं कार्यक्रम में, आगे बढ़ते हैं। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए, जी हाँ, हम शुरुआत करते हैं आज के अखबारों की खास सुर्खियों के साथ। दोस्तों, आज की खास सुर्खियां हैं कि सरकार ने वर्ष 2024 के लिए

0: तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की है। ये पुरस्कार साहसिक क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले व्यक्तियों को मान्यता देते हैं और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सहन शक्ति, जोखिम लेने की क्षमता, टीम वर्क और त्वरित तथा प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता को प्रोत्साहन देते हैं। ये पुरस्कार चार श्रेणियों, स्थलीय साहसिक कार्य, जल साहसिक कार्य, वायु साहसिक कार्य और आजीवन उपलब्धि के लिए के क्षेत्र में दिए जाते हैं। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और 15 लाख पुरस्कार की राशि प्राप्त होती है। दोस्तों, लैंड एडवेंचर श्रेणी में बलजीत कौर और इस्काल जोंग रिग्जिन, वाटर एडवेंचर श्रेणी में रिमो साहा और लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में शिव प्रसाद चमोली को पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। चयन राष्ट्रीय चयन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया है। समिति ने नामांकनों का मूल्यांकन किया और राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करने के लिए पुरस्कार विजेताओं की अनुशंसा की। दोस्तों, ये पुरस्कार युवाओं में साहस, सहन शक्ति, अनुशासन, जोखिम लेने की क्षमता और सहयोगात्मक टीम वर्क की भावना को बढ़ावा देते हैं। साथ ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में तेजी और प्रभावशीलता के साथ प्रतिक्रिया करने की क्षमता को प्रोत्साहित करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। बढ़ते एक और खबर की ओर। जी हां, उत्तर रेलवे ने रेल यात्रियों की सुविधा के लिए इस वर्ष 19 अक्टूबर से बडग्राम श्री माता वैष्णो देवी कटरा बडग्राम विशेष रेलगाड़ी को नियमित रूप से चलाने का फैसला किया है। हमारे जी दोस्तों, यह रेलगाड़ी श्रीनगर, अवंतीपोरा, अनंतनाग, काजीगुंड, बनिहाल, खारी, सुंबर, संगलदान, सावलकोट, डुग्गा, बक्कल और रियासी स्टेशनों पर रुकेगी। इस नियमित सेवा के शुरू होने से कश्मीर घाटी और श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक सुविधा मिलने की उम्मीद है। साथ ही इस रूट पर रेल संपर्क भी मजबूत होगा। और दोस्तों, बढ़ते हैं खेल खबर की ओर। बैडमिंटन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत चाइना ओपन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने शेंझेन में खेले गए पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के ची यू जेन को 21-16, 21-15 से हराया। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन कनाडा के विक्टर लाई से 14-21, 7-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। भारत की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो ने भी थाईलैंड के टोनाकॉर्न साइहेंग और टोनिचा साइहेंग को 21-8, 21-9 से हराकर अगले राउंड में अपनी जगह बनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में भाग लिया। इसका उद्देश्य है भारत की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग और माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, ये थी आज की अखबारों की खास सुर्खियां जो हमने की आपके साथ साझा। और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम सुनवाएंगे आपको एक गीत।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a People-Centered

बेस्टी पड़े टापुर टपुर बिल्कुल दोस्तों, लगातार झमाझम बारिश हो रही है और आपके शहर में बारिशों का मौसम चला है तो चला है, चलता ही चला जा रहा है, रुकता ही नहीं, थमता ही नहीं बिल्कुल। कहीं कहीं कुछ लोगों को हो रही है परेशानी बारिश से और कहीं कहीं मौसम सुहाने से आपका मूड भी अच्छा हो रहा है। दोस्तों आपका मूड अच्छा हो रहा है या ख़राब मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल जो आकाश की हालत है, जो हम सुबह सुबह निकले तो देखा कि घना घन जो बादल हैं वो गरज ही चले जा रहे हैं। और मैं सोच रही थी कि पता नहीं आज स्टूडियो पहुंच पाऊंगी कि नहीं, लेकिन जी हाँ, बारिश की हल्की हल्की बूंदों के साथ मैं ठीक चली आई स्टूडियो में लेकर आपके लिए सुहानी सुबह। दोस्तों अभी आप हमारा प्रोग्राम सुनते सुनते सोच रहे होंगे कि पता नहीं आज मौसम कैसा रहेगा, तो हम है ना, जी हाँ, हम लेकर आए हैं मौसम की जानकारी आपको देने के लिए, आपके साथ साझा करने के लिए। तो आइए सुन लेते हैं कि आगामी 24 घंटों में कोलकाता और कोलकाता के आसपास के इलाकों में आज का मौसम कैसा रहेगा। दोस्तों साधारणतः आकाश में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश से मध्यमतर बारिश होने की संभावना है, कहीं कहीं गरज के साथ भी बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26

डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस था, जो कि सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस कम था। न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस था, जो कि सामान्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस कम था। अधिकतम नमी 99%, न्यूनतम नमी 88% कल 0.78 मिलीमीटर बारिश हुई। तो दोस्तों, ये थी मौसम की जानकारी। उम्मीद है आप इस जानकारी के अनुसार अपना प्लान कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको सुनवाएंगे हम, जी हाँ, मुकेश की आवाज़ में फिल्म चेतना का ये गीत।

0: सुबह की शुरुआत आपके साथ सुन रहे हैं सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।
1: जी हाँ दोस्तों, सुहानी सुबह में एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। और कहते हैं ना कि वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त

तो देख कर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। दोस्तों, इतिहास भी कुछ ऐसा ही है, हमने उसको वक्त दिया और उस वक्त ने वक्त को बदल दिया और इतिहास में साझा हो गई सा। जी हाँ, उसके अंदर इतिहास के अंदर कुछ ऐसे तथ्य शामिल हो गए जो हमेशा के लिए हमारे इतिहास में याद रखे जाएंगे। ऐसे ही वक्त को याद करने के लिए और ऐसे ही वक्त को साझा करने के लिए लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए भारत और विश्व इतिहास की कुछ उल्लेखनीय घटनाएं। सितंबर 1189 रिचर्ड द लायन हार्ट को इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर में राजा के रूप में ताज पहनाया गया। 3 सितंबर 1651 ओलिवर क्रॉमवेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सांसद बलों ने वस्टर बीटल की अंतिम लड़ाई यानी तीसरे अंग्रेजी नागरिक युद्ध में जीत हासिल की। 1709 में स्विस लोगों का पहला बड़ा समूह जर्मन उपनिवेशों में पहुंचा। 1731 में विलियम के एच फ्रिस्को को फ्रिसलैंड का वायसराय बनाया गया। 1783 अमेरिकी और ब्रिटेन के बीच पेरिस की संधि के साथ क्रांतिकारी युद्ध समाप्त हुआ। 1812 इंग्लैंड के लंदन में डिब्बों में सामान भरने के का दुनिया का पहला कारखाना खुला। 1833 में बेंजामिन एच डी ने अमेरिका में पहला सफल समाचार पत्र न्यूयॉर्क सन प्रकाशित करना शुरू किया। 1838 भविष्य में अमेरिका में होने वाले नरसंहार के शिकार लोग फ्रेडरिक डगलस की गुलामी से भाग निकले। 1849 बीसवीं सदी के उत्तरार्ध की लोकप्रिय अमेरिकी लेखिका साना ऑन जुएट का जन्म हुआ। 24 जून 1909 को उनकी मृत्यु के बाद उनकी मृत्यु लेख द टाइम्स में प्रकाशित हुए। दोस्तों, 1901 में ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय ध्वज एक नीले रंग का एनसीन जिसने राष्ट्रमंडल तारा और दक्षिणी क्रॉस अंकित है को पहली बार मेलबोर्न में आयोजित रॉयल प्रदर्शनी में अपनाया था। 1914 अल्वानिया के राजकुमार विलियम को अपने शासनकाल के दौरान हुए विरोध के कारण 6 महीने बाद देश छोड़ना पड़ा। 1921 भारतीय लेखक और कवि अमृत राय का जन्म हुआ। 1923 देश के महान तबला वादक पंडित किशन महाराज का जन्म हुआ। हिटलर द्वारा पोलैंड पर किए गए आक्रमण के प्रतिशोध में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की 1939 में। और 1941 में प्रलय ए एस हाउस कार्ल फिट्स ने पहली बार कीटनाशक जे क्लोन बी का इस्तेमाल ऑशविट्स में किया। दोस्तों, ये थी आज की कुछ खास ऐतिहासिक तथ्य जो हमने किए साझा। जी, आज के दिन हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार का भी जन्म हुआ जो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले सुनवाऊंगी एक गीत और उसके बाद मैं आपके साथ साझा करूंगी कि आज के दिन किस संगीतकार का जन्म हुआ।

जी हाँ दोस्तों, 7:30 और 5 सेकंड हो चुके हैं। लगभग हमारा आधा घंटा पूरा ख़त्म हो चुका है और अभी हम और हैं 30 मिनट। जी हाँ, बातें करेंगे ढेर सारी, लेकिन फ़िलहाल आपको बताएंगे कि आज है, जी हाँ, हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में से एक हैं प्यारेलाल, जिनका है आज जन्मदिन। जी 3 सितंबर 1940 को उनका जन्म हुआ था। प्यारेलाल अपने 8 दशकों से अधिक लंबे कैरियर में हिंदी सिनेमा के सबसे सफल संगीतकारों में से एक हैं। महान संगीतकार प्यारेलाल ने संगीत सम्राट लक्ष्मीकांत शांताराम कुडालकर के साथ मिलकर हिंदी सिने जगत को असंख्य सुपरहिट गीत दिए हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने दोस्ती, हम सब उस्ताद हैं, आए दिन बाहर के, मेरे हमदम मेरे दोस्त, मेरा गांव मेरा देश, बॉबी, रोटी कपड़ा और मकान सहित सदाबहार गाने दिए हैं। दोस्तों, संगीतकार प्यारेलाल को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। प्रतिष्ठित संगीतकार प्यारेलाल लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। तो दोस्तों, हम प्राय गीत सुनते हैं लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल के द्वारा संगीतबद्ध किए हुए। फिलहाल जब बात उनकी चली है,

दोस्तों, ये गीत आपने सुना कंपोजिशन थी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की और आनंद बख्शी की रचना। फिल्म थी रूप तेरा मस्ताना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने ये गीत सुना लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी। हाँ, आज प्यारे लाल जी का जन्मदिन है। और दोस्तों, आज हम आपको बताएं कि कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद में। हम याद करेंगे प्यारे लाल जी को और उन्हीं के द्वारा सुरबद्ध किए संगीत से आपको करवाएंगे रूबरू। जी हाँ, यहीं पर FM गोल्ड यानी खरास सोना पर 100.1 पर आपकी हमारी मुलाकात 11:10 पर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद में होगी। और हम आज संगीतबद्ध किए हुए गीत सुनवाएंगे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी के ही। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और बात करते हैं आज है हमारे महानायक जी किसका जन्मदिन, भला कोई कैसे भूल सकता है। आज है 3 सितंबर और 3 सितंबर 1926 को जन्म हुआ था महानायक के रूप में जो जाने जाते हैं उत्तम कुमार का। दोस्तों, एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक, संगीतकार और गायक जिन्होंने मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम किया, लेकिन उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी काम किया है और उन्हें उतना ही प्यार मिला जितना बंगाली सिनेमा में। दोस्तों, 3 सितंबर 1926 को जन्मे उत्तम कुमार के बचपन का नाम अरुण कुमार चटर्जी था। उत्तम कुमार ने 1948 में फिल्म दृष्टिदान से अभिनय शुरू किया। उनकी शुरुआती कई फिल्में फ्लॉप भी रहीं, लेकिन वर्ष 1952 में आई फिल्म बासु परिवार उनकी पहली बॉक्स ऑफिस हिट थी। 1953 में सुचित्रा सेन के साथ आई फिल्म साढ़े चौहत्तर के बाद उन्हें शोहरत मिली। इसके बाद नायक, एंथोनी फिरंगी, झिंदरबंदी और सप्त सदी जैसी फिल्में, कामयाब फिल्में उन्होंने दी। 24 जुलाई 1980 को 53 वर्ष की छोटी सी उम्र में ये तारा हम सभी को छोड़ कर के कहीं आकाश में विलीन हो गए। तो दोस्तों, हम उनको याद करेंगे फिल्म अमानुष के इस गीत के साथ।

जी हाँ दोस्तों, आपके दिल के पास ही हैं हम। कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि हम हार जाते हैं, टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खो देते हैं, बिल्कुल सोचते हैं कि अब मुझसे ये काम नहीं हो सकता, या मैं इसमें जीत नहीं सकता, मैं इसमें सफल नहीं हो सकता, इसको मैं पा नहीं सकता। हमारे कई ऐसे लक्ष्य होते हैं, कई ऐसी मंजिलें होती हैं जिनमें चलते चलते हम हार जाते हैं, टूट जाते हैं दोस्तों। तो उसके लिए हम हैं ना, जी हाँ, आपका परिवार आपके साथ खड़ा है। हमेशा याद रखिए कि आपका परिवार, आपके अपने प्रियजन हमेशा साथ खड़े हैं। तो फिर ये तो एक वक्त है जो आया है, चला भी जाएगा। कहते हैं ना, स्वामी विवेकानंद ने बड़ी ही अच्छी बात कही है कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। तो खुद पर विश्वास जब आप करेंगे तो भगवान पर भी आपको भरोसा होगा कि एक वक्त ये आया है तो दूसरा वक्त वो भी आएगा ही।

0: गया है।
1: जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम तो सविता है और फिलहाल तो आपके साथ आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले बताऊंगी कि मैं 10 बजे 117 एफएम रेनबो पर नॉन स्टॉप गपशप में आपके साथ ढेर सारी गपशप करने आने वाली हूँ। और जी हाँ 9:10 पर संचेता चैनल पर भी आप सुन सकते हैं हमें, कार्यक्रम रस धारा में। तो बैक टू बैक हमारी आपकी मुलाकातें होने वाली हैं 11:10 पर, यहीं पर इसी चैनल पर 100.1 एफएम गोल्ड पर आपसे मुलाकात होगी कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। और आज हम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जो प्रसिद्ध जोड़ी है उनके द्वारा सुरबद्ध गीत संगीत के जो संगीत दिया है उन्होंने, उन गीतों को सुनेंगे और उनकी यादों बातों के साथ सिलसिला चलेगा लो आ गई उनकी याद में। तो फिलहाल आपकी दोस्त सविता आपसे चाहती है इजाज़त एक शेर के साथ कि तेरा अपना रास्ता था मेरा अपना, तेरा अपना रास्ता था मेरा अपना रास्ता, इस पे भी ये जिंदगी तुझको बसर मैंने किया। मोहम्मद रफ़ी के गीत फिल्म उपहार से ये सुनवाते सुनवाते विदा लूँगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और दिन की शुरुआत जिया सकारात्मक पॉजिटिविटी के साथ करते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया।

0: ने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाद डबेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। यह यात्रा भारत और बेल्जियम के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतर गति को दर्शाती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: Update रहे, आगे रहे. Expert at AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत के विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। एक रिपोर्ट।
7: मंत्रालय ने कहा कि यह उन्नयन चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में हुआ है और निरंतर विकास, प्रभावी आर्थिक नीतियों, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा मजबूत वित्तीय प्रणाली द्वारा समर्थित भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे का परिचायक है। JCR ने एक बयान में कहा कि मजबूत निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश से समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास दर बनाए रखी है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा

0: वित्त वर्ष 2025 में 4.07% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.04% पर आ गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नेहा गोस्वामी।
1: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। एक रिपोर्ट।
2: दिशा सालियान मामले में न्यायमूर्ति सारंगवी कोतवाल और न्यायमूर्ति रंजीत सिन्हा आर भोसले की खंडपीठ ने कल सीबीआई को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश किसी के खिलाफ दोष सिद्ध करने का संकेत नहीं है। पीठ ने कहा, किसी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाएगा जब तक जांच अधिकारी की राय में उनके खिलाफ उचित संदेह पैदा करने के पर्याप्त आधार न हो। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में प्रतियोगिता में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से मात दी। और पहली आईसीसी विमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना है। आईसीसी ने कहा कि 6 टीमों का ये टूर्नामेंट अब भारत में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। 28 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक ह्यूंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। का औपचारिक उद्घाटन 4 सितंबर को होगा।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। उधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है।
4: भोपाल, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मंडला में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक रुक रुक कर जारी रही। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतना में भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने 434 प्रभावित आवासों के लिए 18,01,000 रुपए की सहायता दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट में भी नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है।
5: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि बालेश्वर के राजघाट में सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 10.36 मीटर के खतरे के निशान के मुकाबले लगभग 11.5 मीटर तक पहुंच गया है। झारखंड के गालुडीह बैरेज से छोड़े गए पानी ने नदी के बहाव को और बढ़ा दिया है। भोगराई, बाल्यापाल और जलेश्वर ब्लॉक के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य जारी रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।

0: अपडेट रहें, आगे रहें एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद कनक। एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का सीईओ बनाए जाने की खबर आज की ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, राम मंदिर के लिए वायुसेना के पूर्व अफसर पर ट्रस्ट। दैनिक जागरण लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर के वायुवीर बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले ट्रस्टी, गोविंद देवगिरी बने महासचिव। अमर उजाला की टिप्पणी है, सिंदूर के सेनानी को रामलला की कमान। राजस्थान पत्रिका ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण के हवाले से बताया है, उच्च शिक्षा में बेटियों की उड़ान, दाखिलों में लड़कों को पछाड़ा। साथ ही पत्र ने यह भी लिखा है, राजस्थान मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अब भी लड़कों को बढ़त। नेपाल त्रासदी में राहत और बचाव कार्यों में भारत द्वारा की गई भरपूर मदद पर नेपाल के प्रधानमंत्री का आभार, लोकसत्य के पहले पन्ने पर है। नेपाल के पीएम बोले, भारत का धन्यवाद। अमेरिका में पासपोर्ट नियमों में बदलाव की तैयारी, दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, इसका उद्देश्य अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर प्रतिबंध लगाना है। हिंदुस्तान ने राजधानी दिल्ली में एसआईआर के दौरान की गई मैपिंग पर लिखा है, 45% लोग ही दे पाए अपना पुराना ब्यौरा, नाम जुड़वाने के लिए घोषणा पत्र जरूरी। जनसत्ता ने लुप्त प्राय सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए दक्कन में 16 अहम क्षेत्रों की पहचान किए जाने का समाचार प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से देते हुए लिखा है, सोन चिड़िया की संख्या अब केवल 100-150 ही बची है, ये पक्षी कभी पूरे भारत और दक्षिण पाकिस्तान में पाया जाता था। दैनिक भास्कर की ये पंक्तियां ध्यान खींचती हैं, डिजिटल दौर में दोस्ती का संकट, मैसेज तो होते हैं मुलाकात नहीं। एनसीईआरटी द्वारा 6ठी और 9वीं की सभी भारतीय भाषाओं की नई पुस्तकों के नाम देश की नदियों के नाम पर रखे जाने पर दैनिक जागरण लिखता है, देश की नई पीढ़ी को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की पहल में छात्र सिर्फ भाषा नहीं सीखेंगे बल्कि देश की नदियों के नाम से भी रूबरू होंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह US-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर ग्रेटर एडॉप्शन ऑफ वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज एंड लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू होल्ड टॉक्स विद हिज बेल्जियन काउंटरपार्ट बार्ट डी वीवर इन न्यू दिल्ली टुडे। ISRO to launch Earth Observation Satellite EOS-5 from Sriharikota tomorrow. India's sovereign credit rating upgraded to A- with stable outlook by Japan Credit Rating Agency. Bombay High Court orders CBI probe into death of Disha Salian, former manager of late actor Sushant Singh Rajput. And in women's cricket, India to take on Hong Kong in the second Group A match of 2020 Asia Cup in Dubai this evening. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water organized by the Minister of Jal Shakti yesterday. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. We have more from a correspondent.
4: Prime Minister Narendra Modi emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through a continuous process of review and learning. Appreciating the intensive two-day deliberations, Mr. Modi suggested that the summit should not remain a one-time exercise and called for a continuous process.

0: তিনি কিরকম মহানুভব ছিলেন, তার বাড়ি মেরামতের কাজ হচ্ছিল কদিন বন্ধ রাখায় ঘরে স্তূপাকার আবর্জনায় ভরে থাকলে বাবার ঘর ব্যবহার করতে গিয়ে অসুবিধা হচ্ছিল বলে তিনি রাগে নিজেই ঠিকাদারের বাড়ি গিয়ে পরের দিন থেকে কাজ করার এক রকম আদেশ দিয়ে এসেছিলেন এবং পরে জেনেছিলেন যে ঠিকাদার তার মেয়ের বিয়ের আশীর্বাদের ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন। তখন তিনি স্বীকার করেছিলেন তার অনুতাপের কথা এবং নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সেই ঠিকাদারের মেয়ের বিয়েতে দেখাশোনা করে ফিরেছিলেন। নন্দারায় পড়েল হাওড়া বেলগাছিয়া এল রোড থেকে লিখেছেন। অমিতাভ হোড় লিখেছেন, উত্তম কুমারের শতবর্ষের জন্মদিনে তাকে জানাই প্রণাম। আর প্রতিটি চরিত্রে অভিনয় অনবদ্য, আমার কাছে নায়কের অভিনয় অসাধারণ লেগেছিল। গলফ গ্রিন থেকে অমিতাভ হোড় লিখেছেন, গলফ গার্ডেন থেকে। আর নায়কের অরিন্দম, হ্যাঁ, সেই প্রথাগত রোম্যান্টিক নায়ক নন, কোথাও উত্তম কুমারের নিজের জীবন, নিজের জীবনের চরিত্র নায়ককে, মানে সেটাই সত্যজিৎ রায় সেভাবেই দেখিয়েছেন এক নায়কের উত্থান। সেই প্রসঙ্গে পরে আসবো, আরও একটি বার্তায় চলে যাই। দীপঙ্কর মাল গঙ্গাধরপুর ধর্মতলা হাওড়া থেকে লিখেছেন, মৌচাক ছবিতে দাদার চরিত্রে ওনাকে অসাধারণ লেগেছে। ভাই যখনই সমস্যায় পড়েছে তখনই বড় দাদা হয়ে পাশে থেকে সাহায্য করেছেন, কখনো গান গেয়ে ভাইকে জিতিয়ে দিয়েছেন এবং কখনো মেয়ের বাবাদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন ভাইকে। আসলে কমেডিতে উত্তম কুমার কিন্তু সিদ্ধ হস্ত ছিলেন, সেটি ছদ্মবেশী হোক বা মৌচাক। ছদ্মবেশীর অভিনয়ের ক্ষেত্রে এইটুকুনি বলা যেতে পারে যে ধর্মেন্দ্র ঠিক হিন্দিতে ছদ্মবেশী রিমেক আছে চুপকে চুপকে, ঋষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের, সেখানে কিন্তু ধর্মেন্দ্র বলেছেন যে কোথাও গিয়ে তিনি কিন্তু উত্তম কুমারকে দেখে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ধর্মেন্দ্রও ভালো অভিনয় করেছিলেন কিন্তু উত্তম কুমারের ধারে কাজ দিয়ে মনে হয় সেটা যায়নি, সেটা তো আমরা বলতেই পারি। যাই হোক, মৌচাকের কথা হলো, মৌচাকের একটা গান আমরা শুনে নিই।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে কনকলতা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाद डवेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली को दर्शाता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। सरकार ने विधिक माप विज्ञान भारतीय मानक समय नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ये देश में भारतीय मानक समय को साझा कानूनी

0: से मान्य और प्रमाणित समय संदर्भ के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह US-05 का प्रक्षेपण कल मध्य रात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F617 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि किसी सच्चे प्रतिभा को जब सकारात्मक और सहयोगपूर्ण वातावरण में विकसित किया जाए तो वो महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसा वातावरण न केवल प्रयासों को सफलता में परिवर्तित करने में सहायक होता है बल्कि जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतुष्टिदायक भी बनाता है। नेपाल बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सामग्री भेजी है। वहीं नेपाल और तिब्बत में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों सिक्किम विदर्भ और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड चंडीगढ़ बिहार और छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। कई क्षेत्रों में तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। प्रतियोगिता में भारत ने रविवार को थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Belgium, Bart De Wever, will hold bilateral talks in New Delhi today. Both leaders will discuss the entire spectrum of bilateral relations as well as regional and global issues of mutual interest. The Belgian Prime Minister arrived in the national capital last night on a 3-day visit to India. Prime Minister De Wever is being accompanied by Belgian Minister of Defence Theo Franken. This is his first visit to India since taking office in February last year. The visiting dignitary will also deliver a keynote address at a Confederation of Indian Industry business event in the context of the India-EU Free Trade Agreement. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi chaired the valedictory session of the 2-day National Departmental Summit on Water organized by the Ministry of Jal Shakti yesterday. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. Prime Minister Narendra Modi emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through a continuous process of review and learning. ISRO Chairman V. Narayanan has said that the EOS-05 Earth Observation Satellite will be launched tomorrow. The satellite is scheduled to lift off at 2:55 a.m. aboard the GSLV-F-17 rocket from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. Mr. Narayanan said EOS-05 is a state-of-the-art Earth observation spacecraft and India's first imaging satellite to be placed in a geosynchronous orbit.
2: We in ISRO is proud to inform that we are going to have a launch of Earth Observation Satellite 05 using our GSLV vehicle, GSLV F-17, on 4th September, early morning, 2:55 a.m. This is the first satellite, Earth Observation Satellite, which is going to be placed in the GEO platform for advanced Earth observation purpose.
1: He said the mission will further strengthen India's Earth

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट ड वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार की ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली को दर्शाता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा कि पुलिस की जांच से जवाब मिलने के बजाय और सवाल खड़े होते हैं। उच्च न्यायालय ने CBI को प्राथमिकी दर्ज करने और दिशा के पिता सतीश सालियान का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया, लेकिन यह भी साफ किया कि जांच के दौरान किसी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने तक किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा। सरकार ने विधिक माप विज्ञान भारतीय मानक समय नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ये देश में भारतीय मानक समय को साझा, कानूनी रूप से मान्य और प्रमाणित समय संदर्भ के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इन नियमों को पिछले महीने की 27 तारीख को अधिसूचित किया था और 29 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इन नियमों में भारतीय मानक समय के निर्धारण, रखरखाव, प्रसार और उपयोग के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 180

0: In Mayurbhanj, the Jalaka and the Subarnarekha rivers are also above the danger levels, while the administration continues to evacuation and relief operations. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
1: A federal judge has blocked the Trump administration's latest attempt to limit birthright citizenship in the United States. U.S. District Judge Deborah Boardman issued a preliminary injunction after immigrant rights advocates argued that the new order violated the U.S. Constitution. This decision comes shortly after the U.S. Supreme Court ruled on June 30th that Trump's initial 2025 executive order violated the 14th Amendment, which guarantees citizenship to children born on American soil, regardless of their parents' immigration status. In response to the Supreme Court's rejection, President Trump signed a revised executive order on August 6th, specifically targeting birth tourism and denying citizenship to children of foreign government workers, individuals involved in immigration fraud. However, lawyers representing babies affected by the restrictions successfully asked the judge to intervene. In women's cricket, India will take on Hong Kong in their second Group A match in the 2020 Asia Cup at Dubai International Stadium in UAE today. The match will begin at 8 p.m. Indian Standard Time. The women in blue opened their campaign with a convincing 94-run win in Thailand in Dubai on Sunday. A victory over Hong Kong will help the Harmanpreet Kaur-led side secure a place in the semi-finals of the ongoing eight-team tournament. And that is the end of this news bulletin.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर से वार्ता करेंगे। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। अमेरिका में संघीय न्यायालय ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने के ट्रंप प्रशासन के नवीनतम प्रयास पर रोक लगाई। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,250 के पार, 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
3: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण साब बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। एक रिपोर्ट।
4: वित्त मंत्रालय ने कहा कि अब भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और वित्तीय प्रणाली की बेहतर सुदृढ़ता दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा कि यह उन्नयन चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में हुआ है और निरंतर विकास, प्रभावी आर्थिक नीतियों, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा मजबूत वित्तीय प्रणाली द्वारा समर्थित भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे का परिचायक है। JCR ने एक बयान में कहा कि मजबूत निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश से समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास दर बनाई रखी है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में 4.07% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.04% पर आ गया है। अक्षित

0: रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नेहा गोस्वामी।
1: अमेरिका में जन्मजात नागरिकता को सीमित करने के ट्रंप प्रशासन के नवीनतम प्रयास को न्यायालय ने रोक दिया है। अमेरिका के जिला न्यायाधीश डेबोरा बोर्डमैन ने प्रवासी अधिकार अधिवक्ताओं द्वारा ये तर्क दिए जाने के बाद अस्थायी राहत जारी की कि नया आदेश अमेरिका के संविधान का उल्लंघन करता है। एक रिपोर्ट।
2: यह निर्णय 30 जून को अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के तुरंत बाद आया है जिसमें कहा गया था कि ट्रंप का प्रारंभिक 2025 का कार्यकारी आदेश 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है जो प्रवासी माता पिता के अमेरिका में जन्मे बच्चों को स्थायी नागरिकता की गारंटी देता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकृति के जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 अगस्त को एक संशोधित कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे जो विशेष रूप से अमेरिका में पर्यटन के दौरान जन्मे बच्चों को लक्षित करता है और विदेशी सरकारी कर्मचारियों प्रवासन में शामिल व्यक्तियों के बच्चों को नागरिकता से वंचित करता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचाव कर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल में भोटे कोशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल की भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। नेपाल की प्रधानमंत्री बालिंद्र शाह ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी इस आपदा को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष मजबूती से उठाने की आवश्यकता है। इस आपदा में 583 विदेशी नागरिक भी लापता है। नेपाली सेना और सुरक्षा बलों ने हेलीकॉप्टरों और जमीनी मार्गों से अब तक 11,993 लोगों को बचाया है। नेपाल सीमा के पास तिब्बत के ग्योरोंग काउंटी में अचानक आई इस बाढ़ से चीनी भूभाग में मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है जबकि 541 लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल को एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय विकास साझेदारों ने सहायता का आश्वासन दिया है। पनबिजली परियोजना स्थलों पर बचाव अभियानों में भारत सहित चीन और दक्षिण कोरिया ने भी विशेषज्ञ दल भेजे हैं। इस बीच भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह US-05 का प्रक्षेपण कल मध्य रात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। US-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। श्री नारायण ने कहा कि यह अभियान भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमता को और मजबूत करेगा और इससे पृथ्वी अवलोकन सेवाओं में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि प्रक्षेपण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के बौद्धिक संपदा कार्यालय प्रमुखों की 18वीं बैठक के दूसरे दिन भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर चर्चा हुई। इसमें कहा गया कि बौद्धिक संपदा ढांचा तकनीकी लचीलेपन और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। ब्रिक्स बौद्धिक संपदा कार्यालय प्रमुखों ने परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और IP ब्रिक्स समूह में निरंतर सहयोग के लिए समन्वय तंत्र और प्रगति की समय समय पर समीक्षा पर जोर दिया। उन्होंने वैश्विक नवाचार, रचनात्मकता और आर्थिक विकास के प्रमुख प्रेरक के रूप में बौद्धिक संपदा क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने उत्तरी कैरोलिना में G20 की बैठक से अलग अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष केविन श्वार्ट्ज और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वरिष्ठ अधिकारी के साथ अलग अलग बैठकें की। श्री मल्होत्रा ने एशविले में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भाग लिया जिसमें दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वरिष्ठ आर्थिक नीति निर्माता शामिल हुए। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा।

0: ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में प्रतियोगिता में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से मात दी। और पहली आईसीसी विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना है। आईसीसी ने कहा कि 6 टीमों का ये टूर्नामेंट अब भारत में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। 28 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक ह्युंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डा वेवर से वार्ता करेंगे। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। अमेरिका में संघीय न्यायालय ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने के ट्रंप प्रशासन के नवीनतम प्रयास पर रोक लगाई। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,250 हुई। 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट द वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण देंगे। उनके साथ रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकिंग भी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध है, जो आपसी संबंध और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश शासन आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकिंग के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि विश्व इस समय अब तक की सबसे बड़ी भू राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में बेल्जियम जैसे महत्वपूर्ण साझेदार विचार विमर्श के लिए सार्थक अवसर प्रदान करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 290 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी

मामले में कोलकाता के 11 परिसरों में छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार कंपनी ने झारखंड में 66 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण लिया था। आरोप है कि ऋण राशि को निजी हितों के लिए बाद में समूह की अन्य इकाइयों को भेज दिया गया। सरकार ने विधिक माप विज्ञान भारतीय मानक समय नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ये देश में भारतीय मानक समय को साझा कानूनी रूप से मान्य और प्रमाणित समय संदर्भ के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उपभोक्ता मामले विभाग ने नियमों को पिछले महीने की 27 तारीख को अधिसूचित किया था और 29 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इन नियमों में भारतीय मानक समय के निर्धारण, रखरखाव, प्रसार और उपयोग के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओएस 5 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को जीएसएलवी F-17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के साथ बैठक की। इसमें स्कूल शिक्षा सुधारों के अगले चरण पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के साथ बैठक में आगामी परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। 14वीं नागालैंड विधानसभा के 9वें सत्र का दूसरा और अंतिम सत्र आज आयोजित हो रहा है। इस दिन कई सरकारी बिलों के साथ साथ फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026 समेत कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाएंगे और उनको पारित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। लद्दाख में आगामी 2 दिवसीय द्रास महोत्सव 4 और 5 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें हाल ही में नए जिले के रूप में घोषित द्रास की पर्यटन, सांस्कृतिक और साहसिक क्षमता को प्रदर्शित किया जाएगा। नेपाल बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सामग्री भेजी है। वहीं नेपाल और तिब्बत में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। खेलों में महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। प्रतियोगिता में भारत ने रविवार को थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल करती है आपकी दोस्त कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद में। सभी दोस्तों का आपकी दोस्त सविता एफएम गोल्ड यानी खरा सोना पर। और आज हम किसकी बात करने वाले हैं ये तो हम बता चुके हैं और फिर दोबारा बताएंगे।

0: with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद,
2: लो आ गई उनकी याद
1: 100.1 FM गोल्ड पर।
2: लो आ गई उनकी याद,
3: लो आ गई उनकी याद
1: 100.1 FM गोल्ड पर।
4: दोस्तों, कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद में आज हम बात करने वाले हैं भारतीय फिल्म संगीत और हिंदी सिनेमा के गीतों को यादगार बनाने के लिए। जब जब सफल संगीतकारों की चर्चा होती है तो वहाँ पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का नाम बड़े ही आदर और सम्मान से लिया जाता है। जैसे ही लक्ष्मीकांत को प्यारेलाल का साथ मिला तो दोनों ने संगीत की दुनिया में अपना परचम लहराते हुए अपनी प्रतिभा का लोभा मनवा दिया। अपनी लोक लुभावन धुनों से लोगों के दिलों पर कई दशकों तक राज किया और आज भी जब उनका गाना बजता है, जब हम उनके गाने सुनते हैं तो बेबस ही मुस्कुराने लगते हैं। दोस्तों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के अहम किरदार प्यारेलाल का जन्म 3 सितंबर को हुआ। आज उनका जन्मदिन है और हम उनको याद कर रहे हैं उनके गीतों से, उनकी कुछ खास बातों से। तो पहले सुनेंगे एक और गीत और उसके बाद बातें करेंगे उनकी संगीतमय यात्रा की।

दोस्तों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की कंपोजिशन में आपने ये गीत सुना। प्यारेलाल का जन्म 3 सितंबर 1940 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। कहा जाता है कि प्यारेलाल का पूरा नाम प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा था। इनका बचपन बेहद संघर्षपूर्ण रहा क्योंकि छोटी उम्र में ही उनकी माँ का देहांत हो गया। उनके पिता पंडित राम प्रसाद ट्रम्पेट बजाते थे और चाहते थे कि प्यारेलाल वायलिन सीखें, इसलिए उन्होंने अपने पिता की बात को मानकर वायलिन बजाना सीख लिया, शुरू किया। उन्होंने 8 साल की उम्र में ही वायलिन सीखना शुरू कर दिया था और प्रतिदिन 8 से 12 घंटे का अभ्यास किया करते थे। उन्होंने एंथनी गोंजाल्विस नाम के एक गोवन संगीतकार से वायलिन बजाने का हुनर सीखा था। प्यारेलाल ने उन्हीं दिनों में एक रात्रि स्कूल में 7वें ग्रेड की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लिया, पर 3 रुपये की मासिक फीस न दे सकने के कारण पढ़ाई उन्हें छोड़नी पड़ी। इन मुश्किलों भरे हालातों में भी उनके हौसले कम नहीं हुए और उन्होंने मेहनत के दम पर प्यारेलाल को मुंबई के रंजीत स्टूडियो के ऑर्केस्ट्रा में 85 रुपये मासिक की नौकरी दिलवा दी। फिल्म संगीत से जुड़े लोग बताते हैं कि एक बार प्यारेलाल को लेकर उनके पिताजी जब उन्हें लता मंगेशकर के घर चले गए तो वहाँ पर प्यारेलाल ने लता जी के सामने वायलिन बजाया। इनकी कलाकारी और लगन से खुश होकर लता मंगेशकर ने प्यारेलाल को 500 रुपये इनाम में दिए, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इससे उनका हौसला बढ़ा। और दोस्तों, कैसे बनी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी, ये मैं आपको बताऊंगी। उनकी कैसे मुलाकात हुई और छोटी सी मुलाकात उनकी उम्र भर की दोस्ती बन गई। पहले आपको सुनवाऊंगी उनकी पहली फिल्म पारस मणि का ये गीत, जो आप भला कैसे भूल पाएंगे।

0: BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात. आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद. लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर. लो आ गई उनकी याद. लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर.
2: सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में से आज प्यारेलाल का जन्मदिन है. दोस्तों, उन दोनों की जोड़ी कैसे बनी, ये थी उनकी मुलाकात. मुलाकात मात्र 10 साल की उम्र में हुई थी. बताया जाता है कि उस समय मंगेशकर परिवार द्वारा चलाई जा रही बच्चों की अकादमी सुरील कला केंद्र बच्चे संगीत सीखने आया करते थे, जहां पर समान उम्र और आर्थिक स्थिति के चलते लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल अच्छे दोस्त बन गए. लक्ष्मीकांत ने मिलकर पहली बार 1963 में आई फिल्म पारसमणि को अपने संगीत से सजाया, जिसके सभी गाने बहुत लोकप्रिय हुए. फिल्म का गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा और वो जब याद आए, बहुत याद आए, कौन भला भूल सकता है. लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी जैसे बड़े गायकों के साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ उन्होंने अपने अधिकतर गाने गाए. दोस्तों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने साथ मिलकर के 7 सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीते. उन्हें ये पुरस्कार मिले दोस्ती, मिलन, जीने की राह, अमर अकबर एंथोनी, सत्यम शिवम सुंदरम, सरगम और कर्ज जैसी फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार मिला. ये उनकी जोड़ी की खास पहचान थी. सुनते हैं फिल्म मिलन का ये गीत.

0: दोस्तों, एक निर्देशक के रूप में यश चोपड़ा ने अपने बड़े भाई बीआर चोपड़ा की बीआर फिल्म्स बैनर तले कई संगीतमय हिट फिल्में दी, लेकिन 1973 में यश चोपड़ा ने बीआर चोपड़ा के बैनर से बाहर आकर यशराज फिल्म्स की स्थापना की। तब यश चोपड़ा एक निर्माता और निर्देशक के रूप में अपनी पहली फिल्म दाग के लिए मशहूर सितारे चुनने थे। ऐसे में यशराज फिल्म्स के लिए पहला संगीत निर्देशक का मौका लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ही मिला। साथ ही यश चोपड़ा ने गाने लिखने के लिए अपने पसंदीदा गीतकार साहिर लुधियानवी को चुना, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि दाग की शानदार सफलता के बाद यश चोपड़ा चाहते थे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उनकी अगली फिल्म कभी कभी के लिए भी संगीत दें, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल किसी और फिल्म के लिए काम कर रहे थे, जिसके कारण ये मौका खयाम साहब को मिला और फिल्म कभी कभी वो कर नहीं पाए। बाद में ये फिल्म भी हिट रही। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं फिल्म दाग का ये गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया।
1: क्या है

0: दोस्तों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को 1973 में राज कपूर की बॉबी के साथ दाग के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशकों के लिए भी नामांकित किया गया, जबकि अफसोस की बात यह रही कि इस उत्कृष्ट संगीत होने के बावजूद भी उनको सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार का अवार्ड नहीं मिल पाया था। लेकिन उन्होंने इस फिल्म का जो संगीत दिया, बॉबी फिल्म का, ये आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का गीत। इस गीत को सुनाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक।
1: जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: दोस्तों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एकमात्र ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने अमर अकबर एंथोनी में हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें में एक साथ उस समय के तीनों बड़े गायकों किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और लता मंगेशकर को एक साथ इकट्ठा करके गाना गवाया था। आप सभी लोगों को फिल्म अमर अकबर एंथोनी का एक मशहूर गाना तो और याद होगा, माय नेम इज एंथोनी गोंजाल्विस। कहते हैं कि ये उन्होंने गाना प्यारे लाल ने अपने गुरु एंथोनी गोंजाल्विस को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया था। तो आइए सुनते हैं ये गीत।
1: You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
2: What?
3: My name is Anthony Gonsalves.
2: Gonsalves?
3: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
2: दोस्तों, एक जानकारी के मुताबिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने लगभग 35 साल तक भारतीय फिल्म संगीत में अपना जलवा बरकरार रखा। 1963 से लेकर 1998 तक उन्होंने 503 फिल्मों में 160 गायक गायिकाओं और 72 गीतकारों के साथ कुल 2845 गानों की धुन बनाई। बॉलीवुड जगत के संगीत में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जबरदस्त योगदान जाहिर है और हमेशा याद रहेगा। चलते चलते फिल्म अंधा कानून का ये गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में सुनवाते हुए अब मैं आपकी दोस्त सविता आपसे लूंगी इजाजत। मुलाकात होगी 14 तारीख की शाम को छाया लोक में। तब तक के लिए सुनते रहिए कार्यक्रम। जी हाँ, अंतिम गीत फिल्म अंधा कानून से। मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त सविता।

कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट दी वेवर के साथ वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले आज सुबह बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल रात राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। पिछले साल फरवरी में पद संभालने के बाद ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि दोनों देश शासन आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध है। रक्षा मंत्री ने बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि विश्व इस समय अब तक की सबसे बड़ी भू राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में बेल्जियम जैसे महत्वपूर्ण साझेदार विचार विमर्श के लिए सार्थक अवसर प्रदान करते हैं। बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को अधिक जनसंख्या तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया है। उन्होंने भविष्य की परियोजनाओं के लिए बेल्जियम के साथ सहयोग करने की जरूरत पर बल दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के साथ बैठक की। इसमें स्कूल शिक्षा सुधारों के अगले चरण पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन में भारत की सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनियम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनियम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। प्रवर्तन निदेशालय कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 290 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में कोलकाता के 11 परिसरों में छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार कंपनी ने झारखंड में 66 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण लिया था। आरोप है कि ऋण राशि को निजी हितों के लिए बाद में समूह की अन्य इकाइयों को भेज दिया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि रूस के भीतर यूक्रेन के हमलों और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। श्री रूबियो ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन ऐसी व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं जिनसे यूक्रेन उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों का उत्पादन कर सके। रूबियो ने ये बात कल एक साक्षात्कार में रूस के ईरान को समर्थन और यूक्रेन में जारी युद्ध पर चर्चा के दौरान कही। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन रूस के भीतर सैन्य और ऊर्जा से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त देखी गई। ताजा जानकारी के अनुसार सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 76,779 पर और निफ्टी 53 अंक बढ़कर 23,967 पर पहुंच गया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले आज सुबह बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल रात राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री फ्रैंकन भी आए हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पद संभालने के बाद ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश शासन आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने बेल्जियम के रक्षा मंत्री थ्रियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान ये बात कही।
1: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। भारत और बेल्जियम के बीच लंबे समय से मजबूत संबंध रहे हैं। ये संबंध आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा प्रतिबद्धताओं पर आधारित हैं।
0: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को अधिक जनसंख्या तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने भविष्य की परियोजनाओं के लिए बेल्जियम के साथ सहयोग करने की जरूरत पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि रूस के भीतर यूक्रेन के हमलों और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। श्री रूबियो ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन ऐसी व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं जिनसे यूक्रेन उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों का उत्पादन कर सके। श्री रूबियो ने ये बात कल एक साक्षात्कार में रूस के ईरान को समर्थन और यूक्रेन में जारी युद्ध पर चर्चा के दौरान कही। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन रूस के भीतर सैन्य और ऊर्जा से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओएस 5 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV F-17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,588 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर रहा। क्षेत्रीय स्तर पर रियल एस्टेट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और पूंजीगत वस्तुएं प्रमुख लाभ कमाने वाले क्षेत्र रहे। महिला एशिया कप 2022 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में रविवार को भारत ने थाईलैंड को 94 हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। श्रीकांत ने विश्व के 9वें नंबर के खिलाड़ी कनाडा के विक्टर लाई को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने एआई डेटा केंद्रों और वैश्विक क्षमता केंद्रों पर सरकार का दृष्टिकोण दोहराया। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ा और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर क्राइम और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और रक्षा सहयोग पर आशय पत्र सहित विभिन्न समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट दी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत और बेल्जियम के संबंध दीर्घकालिक हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में बेल्जियम में हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान दोनों देशों की साझा स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो 10 साल पहले बेल्जियम गए थे और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
1: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला दोनों देशों की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आज हुए समझौता ज्ञापन से सतत सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: रिन्यूएबल एनर्जी पर आज हुआ MOU हमारे सस्टेनेबिलिटी सहयोग को नई गति देगा। क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है। इस दिशा में हम बेल्जियम के IMEC इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे।
0: वार्ता में भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। इससे पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने आज सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। वो 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रेंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही।
2: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
0: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रेंकन ने भारत को घनी आबादी तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता को और आगे ले जाने की भी बात कही।
3: भारत और बेल्जियम मित्रता साझेदारी के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हम भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेल्जियम एक तकनीकी रूप से विकसित देश है और उन्नत तकनीक हमारे लिए खासकर यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के साथ भविष्य की परियोजनाओं में सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग संवाद, उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति

0: व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा केंद्रों को बढ़ावा देना, वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना और बैंकों के निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करना शामिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा है कि 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही है। ये दर्शाती है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री क्वात्रा ने भारत सरकार और वित्त मंत्री सीतारामन की ओर से न्यूयॉर्क में अमेरिका के प्रमुख शेयर बाजार नैस्डैक के कारोबारी सत्र का शुभारंभ करने पर ये बात कही। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 7.8% की वृद्धि हासिल करने में लघु और मध्यम उद्यम उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। उन्होंने नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौता एफटीए आउटरीच कार्यक्रम पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में ये बात कही। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के बल पर भारत में विश्व की नंबर एक ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता है। उन्होंने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की आर्थिक वृद्धि में इस उद्योग का योगदान लगातार बढ़ता रहेगा।
2: ऑटोमोबाइल उद्योग का कुल आकार करीब 22,75,000 करोड़ रुपए है। देश के कुल जीएसटी संग्रह में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान लगभग 15% है। यह उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। वर्ष 2025-26 ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान उद्योग के निर्यात में 24% की वृद्धि दर्ज की गई।
0: श्री गडकरी ने भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि 11 कंपनियों के 30 से अधिक वाहन मॉडल पहले ही प्रमाणित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम ने प्रशिक्षण लागत को काफी कम कर दिया है, साथ ही वैश्विक बाजारों में भारतीय वाहनों की विश्वसनीयता को भी मजबूत किया है। उन्होंने घोषणा की कि इस कार्यक्रम का दूसरा चरण अगले वर्ष अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिसमें दुर्घटना से बचाव, पैदल यात्री सुरक्षा और दुर्घटना के बाद निकासी सहित उन्नत सुरक्षा मानक शामिल होंगे। श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वच्छ परिवहन के लिए शुरू की गई परिवर्तन योजना के बारे में जानकारी दी। पंजाब में सरकारी शवगृहों में रखे अज्ञात और लावारिस मृतकों की पहचान के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक पहचान पोर्टल पहचान शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: ये देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो भारत और विदेश में रहने वाले लोगों को दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से जान गंवाने वाले अपने प्रियजनों की पहचान करने में मदद करेगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अकेले पंजाब में लगभग 5 से 6 हजार मृतकों की पहचान नहीं हो पाती है। पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कल इस पोर्टल की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पहचान पहल के अंतर्गत पंजाब के किसी भी सरकारी शवगृह में पोस्टमार्टम के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक अज्ञात और लावारिस शव की चेहरे की तस्वीर, जन्म चिन्ह और शारीरिक विकृतियों जैसे चिन्हों के साथ उसका विस्तृत शारीरिक विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राज्य के सभी 23 जिले और 346 सरकारी अस्पताल इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। जलंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे नए इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
2: आपदा प्रबंधन विभाग ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पटना के गांधी घाट पर आज रात और मोकामा के हाथीदह में कल दोपहर गंगा का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर सकता है। भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के नदी किनारे तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जोखिम से बचने की अपील की गई है। आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के 1070 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: वहीं झारखंड में भी पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
3: रांची में गेतलसूर डैम के 4 रेडियल गेट खोले गए हैं, जबकि स्वर्णरेखा नदी के तेज बहाव को देखते हुए हुंडरू फॉल और नदी किनारे के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में कल शाम मानगो पुल के पास स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर 121.26 मीटर दर्ज किया गया, जबकि आदित्यपुर पुल के पास खरकई नदी 129.76 मीटर पर बह रही थी। हालांकि मंगलवार की तुलना में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन खरकई नदी अब भी खतरे के निशान से 7-6 सेंटीमीटर ऊपर है। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फर्रुखाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की और बाद में प्रभावित लोगों को जमीन के पट्टे और राहत सामग्री बांटी। इस बीच मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,590 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर पहुंच गया। और अब बात खेलों की। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना हांगकांग के ली चेक ल्यू से होगा। उधर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: যা যা বলতে পারেন। তো একটু পরেই দেখি মুখটা লাল, অসম্ভব সুন্দর দেখতে, কি ফিগার সুপ্রিয়া চৌধুরী। একটা চপ্পল পায়ে দিয়ে এদিক থেকে ওদিক ওদিক থেকে ওদিক করে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন দূরে কাঠের উপর। ভয়ঙ্কর অবস্থা সুপ্রিয়া চৌধুরী, কিন্তু লাল মুখ কেন? আসলে তখন ওই লাল মেটেরিয়ালটা মেকআপে বেশি দেওয়া হতো, মুখটা একটু বেশি লাল হতো মেকআপ করার পরে। সুপ্রিয়া চৌধুরী হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলে সারা গায়ে কাঁটা দিতে লাগলো, কি হচ্ছে কি ব্যাপারটা? একটু পরেই বসে আছি বসে আছি, কারো মুখে কোনো কথা নেই, কোনো আলোচনা নেই। তারপরেই দেখলাম যে একটা বুম বুম মানে একটা লাঠির ওপরে একটা
1: মাইক্রোফোন
0: ওই সাউন্ড টেপ করবার যন্ত্র বুম বলতাম আমরা পরবর্তীকালে, সেইটা ধরে আছে একজনে, আর উত্তম কুমার এবারে কিন্তু হাফ আটার স্ট্রাইপ শার্ট ধুতি, কি সুন্দর হাত গুলো, মানে তখন তো আমরা বোধ হয় মানে ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে এক্সারসাইজ করতো, কি স্টাউট, আর মুখ লাল, এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে যেতে যেতেই হঠাৎ ডান দিকে ঘুরে তাকালেন এবং দেখলেন যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি পেয়ারা গাছের নিচে। উত্তমদা মুচকি এসে দুটো আঙুল যোগ করে বললেন একটু থাকুন বা একটু অপেক্ষা করুন, এইটা মেইন করলেন বলে চলে গেলেন। অবাক হয়ে গেলাম, মনে আছে মনে আছে এবং আমাদের দেখেই চিনলেন। আরো 10-15 মিনিট গেল, হঠাৎ দেখি উনি হেঁটে চলে আসছেন আমাদের ওই লোহার বেঞ্চি দিকে, এসেই বসে পড়লেন।
1: আচ্ছা,
0: বসে পড়লেন, হ্যাঁ বলুন কি আপনাদের বক্তব্য আছে? তখন বললাম যে এরকম আমরা কতগুলো প্রশ্ন লিখে এনেছি, আপনি যদি একটু বলেন আমরা লিখে লিখে নেব। হ্যাঁ বলুন, প্রশ্ন বলা হতে লাগলো এবং লেখা চলল, ঠিক যেমন সিনেমার পর্দায় উনি বলেন হুবহু সেই রকম ভাবে কথাগুলো বলে যেতে লাগলেন উত্তর হিসেবে। সে যে মনমুগ্ধকর সমস্ত কথাগুলো, সেই উপস্থিতি, সেই রুটি পরা হাফ শার্ট স্ট্রাইপ শার্ট লোহার বেঞ্চে বসে আছে।
2: আমরা একটু সংবাদ বিরতিতে যাব, আমরা আবার ফিরে এসে আপনার আবার বাকি কথা তারপরে আবার শুনছি।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और रक्षा सहयोग पर राष्ट्रीय पत्र सहित विभिन्न समझौतों का आज आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ज डी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है।
4: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, फूड फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
3: दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वे 10 साल पहले बेल्जियम गए थे और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
4: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं।
3: बेल्जियम के प्रधानमंत्री 3 दिन के भारत यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग संवाद, उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा केंद्रों को बढ़ावा देना, वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्ध सुनिश्चित करना और बैंकों के फंसे कर्जों को कम करना शामिल है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के साथ बैठक की। इसमें स्कूल शिक्षा सुधारों के अगले चरण पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के साथ बैठक में आगामी परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे नए इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार पटना के गांधी घाट पर आज रात और मोकामा के हाथीदह में कल दोपहर गंगा का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर सकता है। भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के नदी किनारे तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जोखिम से बचने की अपील की गई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
3: उधर झारखंड में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इस संबंध में वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि राहत कार्यों की लगातार निगरानी की जाए और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाई जाए। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में रविवार को भारत ने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया था। किदाम्बी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। श्रीकांत ने विश्व के 9वें नंबर के खिलाड़ी कनाडा के विक्टर लाई को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. India and Belgium today exchanged several agreements, including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy, cyber crime and diplomatic training. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with his Belgian counterpart Bart Wever in New Delhi this afternoon. Both leaders discussed the entire spectrum of bilateral relations as well as regional and global issues of mutual interest. In his press statement, Prime Minister Modi stated that shared democratic values, market economy and people-to-people ties make India and Belgium natural partners. Mr. Modi recalled that he visited Belgium 10 years ago and expressed pleasure that the partnership has made remarkable progress over the past decade. The Prime Minister said both countries will achieve doubling of trade in the next 5 years.
4: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है। हमारी सरकारों और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच हुए एग्रीमेंट से डिफेंस को डेवलप।
5: Finance Minister Nirmala Sitharaman has pitched India's reform-led growth story to investors at a high-level business roundtable in New York, highlighting India's 7.8% economic growth in the first quarter of 2026-27 and the improved investment climate. Ms. Sitharaman said India continues to be the world's fastest-growing major economy despite global disruptions and challenges. The finance minister said reforms including the Insolvency and Bankruptcy Code have provided greater regulatory certainty, eased compliance and reduced paperwork under the guidance of Prime Minister Narendra Modi. Ms. Sitharaman reiterated India's commitment to fiscal prudence and discipline amid continuing global economic challenges since the onset of the COVID-19 pandemic. India and France have strengthened cooperation in the textile and fashion sectors with new agreements signed in Paris to promote Indian textiles and craftsmanship in the global markets. The Bharat Tex Trade Federation and Premier Vision Societe Anonyme exchanged an MOU in the presence of Secretary in the Ministry of Textiles, Neelam Shami Rao. In a social media post, the Textiles Ministry said the MOU will strengthen cooperation in exhibitions, market linkages, sustainable sourcing and knowledge exchange. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today lauded the small and medium enterprises industry for playing a pivotal role in achieving 7.8% growth in India's GDP in the first quarter of the current fiscal. The minister said this while chairing a national workshop on leveraging FTA's outreach program in New Delhi. Mr. Goyal expressed confidence that the series of FTAs that India has been signing for months will pave a steadfast pathway in becoming a major exporter with a market share of 2/3 of the international economy. The Supreme Court today held that the Bar Council of India BCI has no statutory power to regulate the conduct of law students, observing that it was for educational institutions to take action against students in accordance with their own regulatory norms. Prime Minister Narendra Modi today took stock of the flood situation in his constituency of Varanasi. He spoke with District Magistrate Satyendra Kumar via telephone to obtain detailed information. He inquired about the arrangements being made in relief camps. The Prime Minister directed that flood relief operations be continuously monitored and that immediate relief be provided to those affected. The India Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over East Madhya Pradesh tomorrow. The Met Department predicted heavy rainfall with thunderstorms and lightning over Bihar, East Rajasthan, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Uttarakhand and Madhya Pradesh tomorrow. In badminton, Kidambi Srikanth stunned world number 9 Victor Lai of Canada in straight games to enter the men's singles quarterfinals of the China Masters Super 750 badminton tournament in Shenzhen today. And with that, we end this news bulletin.
6: Gaane Kothay Golden Shomoy. আপনি শুনছেন 100.1 FM Gold, 100.1 FM Gold, FM Gold. কিছু গান কিছু কথা আপনি শুনছেন সুরেলা সফর 100.1 FM Gold এ সুরেলা সফর সুরেলা সফর

0: बोलो तो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। भारत और बेल्जियम ने आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। भारत को एक बड़ी वैश्विक ताकत बताते हुए श्री वेवर ने आर्थिक और रणनीतिक मोर्चों पर आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्री

0: राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं, जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री तेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में सेशेल्स विधानसभा के अध्यक्ष अजारेल अनेस्टा और सेशेल्स के संसदीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान श्री राधाकृष्णन ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित भारत सेशेल्स के अटूट मित्रता को दोहराया। उनकी चर्चा समुद्री सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री खाद्य सहयोग और क्षमता निर्माण में भारत सेशेल्स साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के प्रबंधन और नियंत्रण पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान श्री यादव ने वायु प्रदूषण से निपटने के प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समन्वित और केंद्रित हितधारक सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने संबंध में वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि राहत कार्यों की लगातार निगरानी की जाए और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाई जाए। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उधर झारखंड में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। किदांबी श्रीकांत चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने कनाडा के विक्टर लाई को हराया। महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप में आज ग्रुप ए में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई में भारतीय समयानुसार रात 8:00 से शुरू होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। India and Belgium today exchanged several agreements, including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes, including cybercrime and diplomatic training. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with his Belgian counterpart, Bart De Wever, in New Delhi this afternoon. Both leaders discussed the entire spectrum of bilateral relations as well as regional and global issues of mutual interest. In his press statement, Prime Minister Modi stated that the world is passing through a phase of great upheaval and situations of conflict persists in many parts of the world. He added that uncertainty is affecting every sector, be it food, fuel or supply chains. He emphasized that India's economy has maintained its momentum even in this challenging environment. He said in the last quarter, India recorded a growth of 7.8%. He further stated that today, India's growth story is becoming a source of confidence and new opportunities for the world. He stated that the scope of bilateral cooperation has expanded beyond traditional sectors to reach strategic areas such as defense and clean energy.
2: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है।
1: Prime Minister Modi said a clean energy future and reliable supply chain are shared priorities for both nations.

didn't

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने आतंकवाद से निपटने के लिए व्यापक और वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों नेताओं ने कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में, किसी भी स्थान पर और किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवादियों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ बेल्जियम की एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने पहलगाम हमले की फिर से कड़ी निंदा की। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। दोनों देश आतंकवाद के बदलते खतरों से निपटने में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत बेल्जियम संयुक्त आतंकवाद निरोधक कार्य समूह का गठन करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। इससे पहले भारत और बेल्जियम के बीच आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

0: व्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री टियो फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। श्रीमती सीतारामन ने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को एक साथ आने का अवसर मिलेगा। इस दौरान न्यायपालिकाओं के बीच संवाद और न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास से संबंधित समकालीन मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे क्षमता बढ़ाने और सिग्नल व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि मुंबई में 18,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सिंधुदुर्ग के सावंतवाड़ी रोड तक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना करने के अवसर पर यह बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इस संबंध में वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बात की। किदांबी श्रीकांत चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने कनाडा के विक्टर लाई को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India and Belgium today exchanged several agreements, including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes, including cybercrime and diplomatic training. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with his Belgian counterpart Bart De Wever in New Delhi this afternoon.
2: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है।
1: Both leaders discussed the entire spectrum of bilateral relations as well as regional and global issues of mutual interest. In his press statement, Prime Minister Modi stated that the world is passing through a phase of great upheaval and situations of conflict persist in many parts of the world. He added that uncertainty is affecting every sector, be it food, fuel or supply chains. He emphasized that India's economy has maintained its momentum even in this challenging environment. He said in the last quarter, India recorded a growth of 7.8%. He further stated that today, India's growth story is becoming a source of confidence and new opportunities for the world. He stated that the scope of bilateral cooperation has expanded beyond traditional sectors to reach strategic areas such as defence and clean energy. In his press statements, Prime Minister of Belgium, Bart De Wever, hailed India as the largest democracy with the fastest growing economy, terming New Delhi as an important ally. Hailing India as a major global powerhouse, Mr. Wever emphasized deepening bilateral cooperation across economic and strategic fronts. The India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders highlighted that Prime Minister Wever conveyed Belgium's solidarity with India in the fight against terrorism, including cross-border terrorism. He once again condemned the terrorist attack on innocent civilians in Pahalgam in Jammu and Kashmir in April last year. The leaders called for strengthened international cooperation in preventing and combating terrorism, including through sanctions mechanisms at the national,

100.1 FM Gold Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: बहुत सारा प्यार और स्नेह के साथ आपकी आरजे दोस्त सुलक्षणा पर्वत आप सभी श्रोताओं का स्वागत कर रही है आपके पसंदीदा हिंदी इवनिंग प्रोग्राम चाय एंड क्लासिक्स में आकाशवाणी कोलकाता के 100.1 FM गोल्ड पर। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, और सिर्फ कहते ही नहीं मानते भी हैं। अब कौन कितना मानता है ये अलग बात है, पर मैं तो 100% से भी ज्यादा मानती हूँ, क्योंकि मुझे हेल्दी और वेल्दी दोनों ही रहना है। और ऐसे में जब नेशनल न्यूट्रिशन वीक चल रहा हो तो फिर प्रोग्राम चाय और क्लासिक्स में इस पर बातें भला कैसे ना हो। आप चाहें तो प्रोग्राम सुनते सुनते चाय कॉफी के साथ हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं। गाना और खाना साथ साथ हो तो उसमें जो मजा है वो किसी और चीज में कहां।

ऐसा है दोस्तों कि आज है 3 सितंबर, और आपको बता दूं कि 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक भारत में मनाया जाता है

0: है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल सितंबर महीने के पहले सप्ताह में यानी 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत साल 1982 में हुई थी। इसे भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आने वाले खाद्य और पोषण बोर्ड फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया था। वैश्विक स्तर पर इसकी जड़ें 1973 में अमेरिका से जुड़ी है, लेकिन भारत ने इसे अपने देश से कुपोषण मिटाने के लिए 1982 में आधिकारिक रूप से अपना कर मनाना शुरू किया। क्या है कि गाना तो मैं आपके लिए प्ले करूंगी, लेकिन क्यों ना इसी बीच ले ले एक छोटा सा नन्हा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: With people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 5:30 और फिलहाल आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी कोलकाता का 100.1 FM गोल्ड, जिसे हम कहते हैं खरा सोना, और आप भी इसे मानते हैं कि ये है खरा सोना। और ऐसा है कि आज 3 सितंबर को आप कार्यक्रम सुन रहे हैं चाइन क्लासिक्स में। जी हाँ, जो विषय है वो है कि 1 से 7 सितंबर तक हम मनाते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक, तो उसी से संबंधित कुछ बातें मैं आपसे साझा कर रही हूँ। वैसे मैं बता दूं कि अब जब खाने पीने की बात हो ही रही है, तो फिर क्यों ना आपका मुंह मीठा करा दूं और थोड़ा कुछ पौष्टिक भी आपको आप तक पहुंचा दूं। वैसे म्यूजिकली आप तक मैं हलवा पहुंचा रही हूं, खा के जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको।

अब ऐसा है कि भगवान झूठ ना बुलवाए मुझसे। जितने देर तक आप हलवा वाला गाना सुन रहे थे, ये तो मुझे पता था ही कि मैं आज कार्यक्रम करूंगी नेशनल न्यूट्रिशन वीक पर। तो मैंने सोचा जब तक आप गाना सुने और माइंड बनाए कि हलवा बनाकर खाया जाए, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर से बना के ले चलूं और आपको गाना सुनाते सुनाते खाऊं। वाकई में क्या बताऊं, इतना स्वादिष्ट था ना, मतलब कमाल का था। और इसका स्वाद अभी भी, मतलब अभी अभी तो मैं बस खाना ख़त्म की हूँ हलवा खाना, अब इतना इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके मुंह में भी पानी आ जाए और आप भी फटाफट हलवा बनाकर खाना शुरू कर दें। वैसे आपको बता दूँ, ये गाना मैंने लिया था फिल्म डांस डांस से विजय

बेनेडिक्ट, उत्तरा केलकर और सारिका कपूर की आवाज में इस गीत को आपने सुना। अनजान ने इसे बड़ी खूबसूरती से कलमबद्ध किया था बड़े मिठास के साथ, और बप्पी लहरी ने संगीतबद्ध किया था। और अब आगे एक और गाना आप सभी के लिए, और उसमें भी खाने की ही बात है। अब क्या खाने की बात है, मैं आपको अगर क्लू दूं तो कहा जाता है और सुनते हैं हम कि जो खाए चना वो रहे बना। तो चना जोर गरम गाना आप सब तक मैं पहुंचाती हूं। कोकिल कंठी, लता मंगेशकर, शहनशाह तरन्नुम, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, नितिन, मुकेश और साथियों की आवाज में फिल्म क्रांति से संतोष आनंद ने इसे कलमबद्ध किया है और संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो हम मनाते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक, मनाने का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, इसे मनाने का प्राथमिक उद्देश्य देश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य और सही पोषण के प्रति जागरूक करना, और इसके मुख्य उद्देश्य और भी हैं, इस पे भी बातें साझा करूंगी। लेकिन पहले हो जाए चना जोर गरम।

0: FM Gold, यानी कि अपना खरा सोना वाला चैनल, और सुन रहे कार्यक्रम चैन क्लासिक्स विद योर आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। और ऐसा है कि आज जिस विषय पर मैं बात कर रही हूँ, यानी कि 1 से 7 सितंबर तक हम मनाते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। और ये मनाने के पीछे जाहिर सी बात है कि बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं, कारण हैं। तो उसमें एक है कुपोषण, और कुपोषण को मिटाना जो है वो हमारा एक मुख्य उद्देश्य है कि भारत में बच्चे, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण और एनीमिया, खून की कमी, एक बड़ी समस्या है। इस अभियान के जरिए लोगों को कुपोषण युक्त भोजन के महत्व को समझाया जाता है। और ऐसा है ना कि मतलब आजकल एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि अगर आपको कुछ पीना है और बाजार जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो कहते हैं चलो नारियल पानी पीते हैं। अब नारियल पानी से याद आया कि क्यों ना आपको सुना दूं अपना देश फिल्म से वो गाना, जिसे कोकिल कंठी लता मंगेशकर ने गाया है, आनंद बख्शी ने उसे बड़ी खूबसूरती से लिखा है, आर डी बर्मन ने संगीतबद्ध किया है। ले लो रे ले लो बाबू, क्या नारियल पानी।
1: बाबू ले लो ना नारियल।

0: ऐसा है ना दोस्तों कि ये जो एक सप्ताह है 1 सितंबर से 7 सितंबर, इस बीच हम मनाते हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, और इन सातों दिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जितने लोगों से मिलते हैं, घर में, रिश्तेदारों से, बाहर, आस पड़ोस में, सबको जागरूक करें और ये बताएं कि ये सप्ताह आखिर हम क्यों मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं ताकि हम कुपोषण के शिकार ना हो जाएं, इसलिए मनाते हैं ताकि हम बैलेंस डाइट लेना शुरू करें, इसलिए मनाते हैं ताकि हम अपने अपनों खुद और अपने अपनों को भी जो है स्वस्थ जीवन शैली को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर हम चर्चा करें, बातचीत करें, और उसी हिसाब से हम अपना जो है ना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो है वो उसी हिसाब से हम लें। और अब जब बात खाने की आती है ना, तो पता नहीं सबसे पहले मेरे मुंह में पानी आ जाता है। वैसे हलवा भी खाई, नारियल पानी भी पिए, उसके पहले चाय भी पी थी, चना भी खाई हूँ, लेकिन फिर भी खाने की बात आती है ना, मैं बड़ी फूडी इंसान हूँ, और शायद सबसे ज़्यादा मुझे ही ध्यान रखना पड़ेगा कि खाना जो है वो बड़े सीमित पोषण में ही लूं। कहा जाता है कि अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 ही खाइए, थोड़ा सा पेट अगर खाली रहेगा तो पाचन जो है बहुत अच्छे से होगा। अब बात करूं बैलेंस डाइट की, तो लोगों को ये सिखाना कि केवल पेट भरना काफी नहीं है, बल्कि भोजन में सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स जैसे पोषक तत्व शामिल होना जरूरी है। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, फास्ट फूड और अत्यधिक प्रोसेस खाने को जो है उसमें काफी नुकसान होता है और हमें उससे बचना चाहिए, यानी कि पारंपरिक व घर के बने पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देना जो है बहुत ही जरूरी है अगर आप एवर यंग रहना चाहते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि अरे बचपन तो गुजर गया, जवानी में आ गए और इस जवानी को बरकरार रखना है तो बैलेंस डाइट लेना है, सही स्वस्थ जीवन शैली को फॉलो करना है, और प्रिवेंटिव हेल्थ यानी कि बीमारियों से बचाव भी जो है बहुत जरूरी है। सही खान पान के जरिए मोटापे, डायबिटीज और दिल की बीमारियां जैसी जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं को रोकना भी बहुत जरूरी है। इस सप्ताह के दौरान देश भर के स्कूलों, आंगनबाड़ियों और स्वास्थ्य केंद्रों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, सेमिनार और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है ताकि ये संदेश हर घर तक पहुंचाया जा सके। और हम भी भला पीछे कैसे रह सकते थे, इसीलिए सोचा कि क्यों ना खरा सोना पर भी इस विषय से संबंधित कार्यक्रम पेश करें। और फिलहाल आपको बता दूं कि 6 बजे से लेकर 6:10 तक आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में समाचार 5 मिनट के लिए, और दूसरे 5 मिनट में मानी 6 बजे से लेकर 6:05 तक न्यूज इन हिंदी, और 6:05 से 6:10 तक न्यूज इन इंग्लिश, और 6:10 पर हाजिर हो जाऊंगी लेकर चाइन क्लासिक्स का पार्ट 2। और बाय द टाइम आप सोचे कि न्यूज सुने और उसके साथ साथ कुछ काम करे, या फिर न्यूज ही सुने संपूर्ण रूप से, क्योंकि क्या है ना कि अब गाने सुनते सुनते ऐसा ना हो कि हम भूल जाए कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यही कहूंगी, डॉक्टर तो नहीं हूं लेकिन बचपन से सुनते आई हूं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, और आप कितना भी खाएं और कितने भी जिम जाएं, लेकिन अगर आप हंसते नहीं हो ना तो जिंदगी बेकार है, इसीलिए हंसना भी बहुत जरूरी है। तो जिंदगी क्या है, एक लतीफा है। सुनते हैं ये किशोर कुमार और साथियों की आवाज में फिल्म अमृत से आनंद बख्शी ने इसे कलमबद्ध किया है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया। इसे सुनते सुनते हम रुख करेंगे दिल्ली केंद्र की ओर, जहां सुनेंगे पहले न्यूज इन हिंदी और उसके बाद न्यूज इन इंग्लिश।
1: सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, 7 दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
2: अच्छा दादा।
1: हाँ तो बच्चों,

0: मियाँ बीवी आठवीं मंजिल पर रहते थे। मियाँ दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर।
2: न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा क्षेत्र में भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने इस संबंध में वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बात की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। महिला 2020 क्रिकेट एशिया कप में आज ग्रुप ए में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। किदांबी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 6:10 और 28 सेकंड और वादे के मुताबिक सुलक्षणा हाजिर है लेकर चाय एंड क्लासिक्स का पार्ट टू। और ये कार्यक्रम आप सुनते हैं अपने खरा सोना वाले चैनल पर यानी कि 100.1 FM गोल्ड पर। और ऐसा है कि 6:10 से लेकर 6:30 तक एक से बढ़कर एक खूबसूरत गाने सुनेंगे और वो सारे के सारे गाने ऐसे हैं ना कि सुनने पर मतलब इंसान कहीं ना कहीं मंत्रमुग्ध हो ही जाता है। और ऐसे गाने एक बार क्या बार बार सुनो तो भी दिल नहीं।

0: Come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted innovation, cooperation and sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: फिल्म अनामिका से आपने जो गाना सुना था उसे कलमबद्ध किया था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया था आरडी बर्मन ने और आवाजें कुकल कंठी लता मंगेशकर की थी। और अब समय हो चला है कि थोड़ी ही देर में मैं आपसे आज्ञा अभी ले लेती हूँ क्योंकि 6:30 बजे से आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा और इस बीच आपको एक और भी खूबसूरत गाना सुनवाने वाली हूँ। कोकिल कंठी लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म हरजाई से निदा फाजली ने इसे कलमबद्ध किया है और संगीत से सवारा है आरडी बर्मन ने। इस गीत को सुनते सुनते आज्ञा दीजिए अपनी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत को। वैसे बता दूं कि 7:02 पर आप मुझे दोबारा सुन सकते हैं, हाँ 100.1 FM गोल्ड पर नहीं बल्कि 107 FM रेनबो पर, यानी कि दिल से दिल तक वाले चैनल पर रहूंगी 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। लेकिन ये भी बता दूं कि 7:30 से 8 बजे तक आप सुनेंगे कार्यक्रम न्यूज ऑन एयर ऐप पर। और फिलहाल आप सभी के लिए तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं ये सुनते सुनते आप सभी से आज्ञा चाहती हूं। नमस्कार।

0: वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद अमरीश जी।
0: आइए नजर डालते हैं सबसे पहले मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
2: थैंक यू अमरीश। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एक्सटेंड लूजिंग स्ट्रीक, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 400 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 23,900। इंडिया एंड बेल्जियम अग्री टू डबल द बायलैटरल ट्रेड इन नेक्स्ट फाइव ईयर्स, ऑल्सो डिस्कस एक्सपैंडिंग कोऑपरेशन इन एरियाज इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स अमंग अदर्स। एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज।
0: घरेलू शेयर बाजारों में आज भी गिरावट का रुख रहा। सेंसेक्स 400 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 23,900 अंक से नीचे बंद हुआ। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्षों में आपसी व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज समेत अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई।

0: Hello and good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amrish Saxena.
1: Namaskar. श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं. स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं

0: And before we begin the program and give you details of the top story, here's a disclaimer for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों के मुख्य सूचकांक लगातार चौथे दिन आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 417 अंक यानी आधे प्रतिशत से अधिक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 41 अंक यानी 0.2% की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा। इससे पहले विदेशी मुद्रा बाजार में मजबूत प्रवाह से सकारात्मक धारणा के चलते बाजार बढ़त के साथ खुले। हालांकि कारोबार के दूसरे हिस्से में बाजार शुरुआती बढ़त को कायम नहीं रख सके। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और वैश्विक बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के कारण निवेशक सतर्क रहे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में प्रमुख सूचकांकों की तुलना में मजबूती देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक में 0.4% और निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.2% की तेजी दर्ज की गई।
0: Benchmark domestic equity indices declined for the fourth consecutive session today. The Sensex shed 417 points, or over 0.5%, to close at 76,153. The Nifty fell 41 points, or 0.2%, to settle at 23,873. Earlier, the markets opened on a higher note amid positive sentiment, supported by strong foreign exchange inflows. However, markets failed to hold their initial gains during the second half of the session as elevated crude oil prices and global yields kept investors cautious. On the other hand, the broader market at the National Stock Exchange showed resilience. The Nifty Mid-Cap 100 index rose 0.4%, while the Nifty Small-Cap 100 index jumped 1.2%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में टाइटन 2.2%, ट्रेंट 1.9% और आईटीसी 1.6% नीचे रहे। दूसरी ओर एक्सिस बैंक में 0.9%, अडानी पोर्ट्स में 0.8% और एशियन पेंट्स में 0.5% की बढ़त दर्ज की गई।
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द BSE 17 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एज्ड अपवर्ड। अमंग द टॉप परफॉर्मर्स रियलिटी रोज 2.4%, हाउसिंग फाइनेंस एंड कैपिटल गुड्स गेन्ड अराउंड 1% एंड मिड स्मॉल प्राइवेट बैंक्स एडेड 0.9%। इन कॉन्ट्रास्ट फोकस्ड IT एंड IT डिक्लाइंड 1%, कंस्यूमर ड्यूरेबल्स फेल 0.6% एंड ऑटो लॉस्ट 0.5%। द ओवरऑल मार्केट breadth at the BSE was positive as shares of 2,545 companies advanced, shares of 1,778 companies declined and shares of 223 companies remained unchanged.
1: और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 49 पैसे मजबूत होकर 94.49 रुपए पर बंद हुआ। पुनीत जी, जैसा बाजार

0: लगातार चौथे दिन भी गिरावट दर्ज की गई है। कौन से आपको ऐसे खास कारण लगते हैं जिसकी वजह से बाजार बार बार कोशिश करता है लेकिन फिर कहीं फिसल जाता है?
1: तो अम्बरीश जी, आज के बाजार की खास बात है कि जो हेडलाइन नंबर्स हैं यानी इंडेक्स को यदि हम देखें तो वहाँ पर सेंसेक्स में काफ़ी भारी गिरावट है लेकिन निफ्टी में उतनी गिरावट नहीं थी। और यदि हम मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को देखें तो वहाँ पर हमने अच्छी बढ़त देखी है। स्मॉल कैप में तो 1% इंडेक्स में बढ़त देखी, तो ये काफ़ी मिला जुला सा बाजार है। और ये कहना मुश्किल है कि ये बाजार में इनहेरेंट मंदी थी, जबकि एडवांस डिक्लाइन में भी हम देखते हैं एडवांसिंग स्टॉक्स काफ़ी अच्छे थे। तो हेडलाइन नंबर्स तो हमें बता रहे हैं कि थोड़ी कमजोरी है, लेकिन अगर व्यापक बाजार को देखता हूँ, ब्रॉडर मार्केट को देखता हूँ तो मुझे उतनी कमजोरी नहीं लगती। दूसरा ये मैं कहूँगा कि जो भारतीय बाजारों के जो इंटरनल फंडामेंटल्स हैं, खासतौर से दो बड़ी बात मैं कहूँगा। पहली बात, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, FIIs की जो डेटा हमारे सामने अब आना शुरू हुआ है वो बहुत अरसे के बाद पॉजिटिव आना शुरू हुआ है। थोड़ी बाइंग शुरू हुई है, बहुत एग्रेसिव बाइंग नहीं है, बहुत बड़ी बाइंग नहीं है, लेकिन सेलिंग नहीं है सबसे बड़ी बात। और दूसरा है कि मामूली हम देखते हैं बाइंग हो रही है, ये एक अच्छा संकेत है बाजारों के लिए। और दूसरा, जो FCNRB जो डिपॉजिट स्कीम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाया था ये सोचकर कि हमें अपने जो मजबूत जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसको और मजबूत करना है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो चौंकाने वाली है। $127 बिलियन, पहले अनुमान आया था $20 बिलियन का, उसके बाद बहुत ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट आए थे $50 बिलियन के, और उसके सामने जो परफॉर्मेंस आई है, और वो भी जब ये स्कीम एक महीने पहले बंद कर दी गई। एक्चुअली ये स्कीम 30 सितंबर तक चलनी थी लेकिन इतने ज़्यादा फॉरेन फ्लोज थे कि RBI को वो स्कीम एक महीने पहले बंद करनी पड़ी। उसके बावजूद $127 बिलियन जो हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा है वो भारत में आए, तो ये कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं और मुझे लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य में हमको बाजारों की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए।
0: पुनीत जी, लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि जल्दी इस स्कीम को बंद किया गया और हम देख रहे हैं रुपये में जो मजबूती आई है, तो क्या कारण था कि अगर ज़्यादा इनफ्लो आ जाता तो क्या उससे प्रॉब्लम होने वाली?
1: नहीं, देखिए दो प्रॉब्लम इसकी होती है। पहली प्रॉब्लम ये है कि जो आप जिस स्कीम के तहत ये लेकर आ रहे हैं उसकी थोड़ी कॉस्ट RBI के ऊपर पड़ रही है, क्योंकि RBI ने जो एक्सचेंज का जो रिस्क है, जो प्रीमियम है, वो RBI ने लिया, तो उसकी वजह से थोड़ी कॉस्ट ऑफ फंड्स RBI को उसमें ज़्यादा पड़ेगी। थोड़ा आप देखेंगे जो आने वाला समय है RBI की बैलेंस शीट पर इसका असर पड़ेगा, नेगेटिव असर पड़ेगा। दूसरा, जो ये $130 बिलियन का इन्फ्लो हुआ है, इस वजह से आज ही के आंकड़े मैं बता रहा हूं आपको कि बैंकिंग सिस्टम में 10 लाख करोड़ रुपए सरप्लस लिक्विडिटी हो गई है। और जो ओवरनाइट रेट है, जो ओवरनाइट बैंकिंग रेट कहलाता है, ओवरनाइट बैंकिंग रेट रिजर्व बैंक के एक टारगेट रेट होता है कि रिजर्व बैंक एक राइट रेट मेंटेन करना चाहता है, उस रेट के नीचे आ गया है ओवरनाइट रेट। यानी बैंकों को ऊपर ये बर्डन पड़ेगा, उनको जो पैसा सरप्लस बैंक में है वो डिप्लॉय इतनी फास्ट तो देखिए कर नहीं सकते। 10 लाख करोड़ रुपए आप इमीडिएटली आप उधार नहीं दे सकते, डिप्लॉय नहीं कर सकते, और वो बैंकों की ट्रेजरी में वो पड़ा हुआ है, उसकी कॉस्ट पड़ रही है बैंक के ऊपर। बैंक ने ऊपर रेट पे बोरो किया हुआ है, 6.5% FCNRB में बैंक्स को रेट दिया है उन्होंने, तो इसका असर नेगेटिव पड़ता है कि ज़्यादा पैसा भी और जिसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं उसका नुकसान होता है, और यही कारण है कि RBI ने ऐसा कदम उठाया है।
2: पुनीत, यू नो markets, of course, like we said, saw today, it's the fourth day that the markets, this week at least, that the markets have, you know, ended in red, closed in red. But this is not a one-off. We've been seeing this volatility for a few months now, over a period of time. Now, for those of the investors, for those people who do not have the appetite to invest in a stock market, who are risk averse, at this moment, if they do not want to, you know, venture into the stock market, or if they are already in the stock market, but they are looking at other avenues, what are the other options, especially given the kind of geopolitical situation right now there is, what are the other options they have for investment?
1: Anubha, it's a very good question you put forth, and it's very relevant in today's thing. Suppose you don't want to invest in markets, you don't want to take that risk. Government over the past few years, particularly last 5-6 years, has introduced many interesting instruments which have very low risk and a higher return than FDs, bank deposits that usually people go for. For example, government has a lot of infrastructure investment trusts which are called InvITs. Yeah. They usually give about 8-10%, maybe more in some cases, a 10-12% kind of return annually, and they're absolutely safe. Most of them are very safe. You have real estate investment trusts, REITs, which

0: So you can really look at it from different perspectives.
1: Okay.
0: One, of course, is the fact that the absolute number, if you look at the 53.3 below long-term average, means that there is some inherent underperformance vis-a-vis business activity.
1: Okay.
0: But when I look at it in context of the challenges that the economy has, so this was a very difficult period for Indian economy, where you had the war in West Asia, you have war in Europe, commodity prices have gone through the roof, inflationary pressures are there. The story itself mentions that the input cost pressures have really gone up. When I look at all this, it gives me a lot of satisfaction that our business activity continues to be robust.
1: Right.
0: It continues to expand.
1: Yeah.
0: Many of the countries have seen huge challenges. And here I might mention the fact that China is facing a crisis in manufacturing.
1: Okay.
0: There is a lot of talk right now that China has to come out with a stimulus to boost its... And this is despite China having the highest possible exports, highest numbers of exports in the last many, many years. That means China's domestic economy is not doing well at all, because export numbers are very, very large. So clearly, I think, given these challenges and the context of the geopolitical challenge, difficulties we have, I think these numbers are pretty good. And the moment the inflation pressures go down, and I think the war sooner or later comes to an end, I think we'll do well.
1: Right.
2: और चलते हैं अगली खबर की ओर. भारत और बेल्जियम के बीच आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा भविष्य और भरोसेमंद सप्लाई चेन दोनों देशों की साझा प्राथमिकताएं हैं. उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में आज हुए समझौता ज्ञापन से आपसी सहयोग की निरंतरता को नई गति मिलेगी.
3: क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है. सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है. इस दिशा में हम बेल्जियम के आईमेक इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे. बेल्जियम की कंपनीज के लिए हमने भारत में इन्वेस्टमेंट फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म का गठन किया है. हमने इंडिया बेल्जियम बिजनेस फोरम को एक रेगुलर मैकेनिज्म बनाने का निर्णय लिया है. हम दोनों देशों की फाइनेंशियल, फिनटेक और रेगुलेटरी संस्थाओं के बीच

0: के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने अपने वक्तव्य में भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। पुनीत जी, बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं भारत और बेल्जियम के बीच में, और बेल्जियम दुनिया की 24वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अगर इसको हम इस नज़रिए से देखें कि भारत और EU के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है, तो इन समझौते के क्या मायने?
1: देखिए, भारत ने, जैसे आपने कहा कि भारत अपना जो ट्रेड बास्केट है वो एक्सपेंड कर रहा है बहुत तेजी से। तो एक तरफ हम देखते हैं कि FTA हम UK से साइन करते हैं, EU से साइन करते हैं, अफ्रीका में साइन कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से साइन करते हैं। तो बेल्जियम भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है, पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी में बेल्जियम का बहुत बड़ा योगदान है। और जैसे हम जानते हैं कि आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होगा भारत की प्रगति में, तो मुझे लगता है ये जो एक समझौता है उस लक्ष्य से वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा।
0: और एक और अच्छी खबर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम में विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने की दिशा में मजबूत आधार देंगे। उन्होंने दुनिया भर में भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों के अधिकतम उपयोग की दिशा में देशव्यापी और समग्र प्रयास करने का आह्वान किया। तो पुनीत जी, जैसा आप अभी जिक्र ही कर रहे थे कि जो मुक्त व्यापार समझौते हैं, इनके माध्यम से भारत अपने व्यापार को काफ़ी विस्तार दे रहा है, और जो अभी हमारी GDP की फिगर्स आई हैं उसमें छोटे और मध्यम उद्योगों की भूमिका पर प्रकाश डाला पीयूष गोयल जी ने, आप इसमें और क्या जोड़ना चाहें?
1: देखिए, जो भारत को अपनी जगह बनानी है अगर इंटरनेशनल ट्रेड में, हमारा अभी भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत कम है, करीब करीब 2% से भी कम हमारा जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में, और वो हमें 5% का हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने कई बार ये बात कही है, और मुझे लगता है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एक जो कॉम्प्लेसेंसी थी, एक हम बिल्कुल बैठे थे आराम से कि देखिए कोई बात नहीं, ट्रेड हमारा एक दर्रे पे चला आ रहा था पिछले 50-60-70 वर्षों से, वो एक शेकअप हुआ है। और इसलिए ये जो बास्केट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खास तौर से मैं कहूँगा, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और सच बताऊँ आपको, इसका असर आपको 5 वर्ष के बाद मालूम होगा। ये अभी ये एग्रीमेंट हम कर रहे हैं, इसका असर अगले 6 महीने में या 1 साल में आप नहीं देखेंगे, जो नंबर्स हैं उसमें 2-3-4 वर्ष लगेंगे, फिर आप इसका असर देखिएगा।
0: और अभी तो जैसा गोयल जी ने कहा है कि कनाडा, मेक्सिको, चिली और तमाम और देशों के साथ भी भारत इस तरह के समझौते करने वाला है।
1: 50 ऐसे FTAs इन द वर्क्स हैं भारत के लिए, और एक बहुत बड़ा एक नंबर है। देखिए, भारत जैसी अर्थव्यवस्था ही अफोर्ड कर सकती है, छोटे देश तो कोई ऐसा एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते। तो आज हमारी अर्थव्यवस्था इस पोजीशन में है कि हम ऐसे एग्रीमेंट्स साइन कर सकते हैं, ये भी एक उपलब्धि है।
2: लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी टुडे एम्फसाइज्ड दैट इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बिकम द वर्ल्ड्स नंबर वन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ड्रिवन बाय इनोवेशन, क्वालिटी एंड कंपेटिटिव प्राइसिंग। एड्रेसिंग द 66th Annual Convention of Society of Indian Automobile Manufacturers, SIAM, in New Delhi, Mr. Gadkari said the sector, currently valued at over 22.75 lakh crore rupees, contributes nearly 15% of the country's GST collections and supports around 4 crore direct and indirect jobs. He highlighted that India's automobile exports grew by 24% during 25-26. The union minister also expressed confidence that the industry's contribution to the country's economic growth will continue to expand. Puneet, I just read that the auto sector is really very, very important for us. It contributes to our GDP in a very big way. The exports have grown by 24% in 25-26. What is the way forward? What are the areas where we need to work in this sector?
1: So Anubhal, like you said, I think if for any country, any economy, automotive sector is central to growth, because it is not only the direct taxes or the employment that it provides, the indirect mobility, the indirect momentum it provides to the economy. So unless the transportation sector grows, you can't have an economy which is growing. So clearly it is that important. However, in India, this industry is transforming because of the way the fuel sector or the energy sector is transforming. So now you have a whole spectrum of vehicles, from electric vehicles to hybrids to to ethanol driven to mixed fuel. I think that is the way forward. The

0: the industry has to adapt to these new technologies in terms of fuel, in terms of mobility, and that is how we can grow. Also, if you look at exports, if you look at new technologies, I think innovation in automotive sector will be the way forward for
1: us. So R&D is one area where we need to really work.
0: Absolutely, and I know personally, I know a lot of people who are working in this area, and innovation and technology and research is the heart of this. If we don't do it, we will lag behind for sure. Right.
2: और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। आज एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग 0.3% बढ़ा, जबकि जापान का निकेई 225 0.2% गिरा। यूरोपीय बाजारों में अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स लगभग सपाट कारोबार कर रहा था और लंदन का फुटसी 100 0.4% आगे चल रहा था। पुनीत जी, आप क्या कहेंगे एशिया और यूरोप के आज के बाजारों की परफॉर्मेंस के बारे में?
0: देखिए, एशिया यूरोपीय बाजारों में हमने देखा है कि काफ़ी वॉलिटिलिटी बहुत रही है पीछे, खासतौर से सेमीकंडक्टर सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि इस स्टॉक्स की बहुत ज़्यादा वेटेज है कोरिया में, जापान में, ताइवान में, तो वहाँ पर काफ़ी वॉलिटाइल वो रहा है। और अमेरिका में भी थोड़ा टेक्नोलॉजी सेक्टर के शेयरों में गिरावट हमने देखी है पिछले दिनों, तो ये एक रिस्क फैक्टर रहा है इकोनॉमीज के लिए। पर मुझे लगता है कि गिवन द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, ये वॉलेटिलिटी एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है। आप देखेंगे कभी ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, और इसके मुकाबले भारत तो काफी स्टेबल है।
1: Let's move on to the US markets. US equities ended higher yesterday as bond yields eased slightly from their multiple year highs. The Dow Jones Industrial Average rose 0.6%, while the S&P 500 and the Nasdaq Composite gained almost 0.5%. Puneet, we are seeing similar, you know, what we are seeing in the Indian markets. That kind of volatility is also being seen, you know, world of course, the world over, because it's at the end of the day, we are living in a global village, you know, it's a global economy. But moving forward, how do you see the US markets behaving, or even, you know, the US economy moving ahead? Because there's a lot of talk about the interest rates, which was being talked about that at the beginning of the year, that, you know, probably one, there's going to be one cut in the before the end of the year. So how do you see that?
0: So just to add to that, because so Fed fund rates, we have the probability, there's a poll which goes on in US. So we have a fairly good idea what are expectations. Right now the expectation is that 63% probability is there that there will be an interest rate cut in the next Fed meeting. I do not personally believe in it, but assume, because I don't think they're going to increase the interest rate before the next midterm elections in USA. However, I think US economy is very volatile, like the US geopolitical situation right now, and it's all linked, you know, to each other. But my guess is that the US continues to do very well, but it will be a volatile thing. And government in US is, of course, promised to pump in a lot of liquidity, a lot of money into a system to bring down these bond yields. Let's see if it happens or not.
1: Right. Let's move on to commodities. Global crude oil prices erased earlier losses and hovered near 6 week highs after fresh US strikes on Iran and renewed Israeli threats against Tehran heightened concerns about supply disruptions. Brent crude was trading 1.6% up at $97.17 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was also trading 2.2% higher at $93 per barrel when reports last came in.
2: और सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1.8% बढ़कर 1,53,941 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, और चांदी 1.8% बढ़कर 2,32,533 रुपए प्रति किलोग्राम थी। पुनीत जी, आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? एक बार फिर से हमें तेजी दिखाई दे रही है सोने और चांदी में आज।
0: अम्बरीश जी, देखिए, जैसा शेयर मार्केट में तेजी मंदी चल रही है, काफ़ी वॉलीटिलिटी चल रही है, ऐसे ही करेंसी मार्केट्स में, यील्ड में हम देख रहे हैं, वैसा ही माहौल कुछ सोने चांदी के बाजारों में लग रहा है। काफ़ी वॉलीटाइल है। परसों बाजार काफ़ी जोर के गिरे थे, फिर वहाँ पर फिर बढ़त आई। ये भी न्यूज़ ड्रिवन है, सेंटिमेंट ड्रिवन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी ये माहौल रहेगा। तो पूरा एक वॉलेटिलिटी का माहौल या इंस्टेबिलिटी का माहौल मार्केट्स के अंदर और इकोनॉमी में भी चल रहा है, और उसी का ही रिफ्लेक्शन है। बट देखिए, नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेजी है, बहुत मंदी है, वो 1-2% के रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऐसा ही रहेगा शायद।
1: अ वेरी क्विक कमेंट फ्रॉम यू पुनीत, यू नो द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, दे वी कैन लाइक वी सॉ दैट every day it's a, you know, volatility, but given the fact that we were

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और बेल्जियम ने आज व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द विवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री तेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट

में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा क्षेत्र में भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। किदांबी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तनिषा क्रेस्ट्रो को हार का सामना करना पड़ा। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में आज ग्रुप ए में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: অধ্যায়কে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হচ্ছে। নন্দন চত্বর জুড়ে তৈরি হয়েছে উৎসবের আবহ। সন্ধ্যায় শ্রদ্ধাঞ্জলি পদযাত্রায় অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এরপর গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শনশালায় মহানায়কের স্মৃতিতে একটি প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করেন তিনি। উত্তম কুমারের স্মৃতি বিজড়িত বসুশ্রী সিনেমা হলে শিল্পী সংসদ আয়োজিত দুস্থ শিল্পীদের সাহায্যার্থে শুরু হয়েছে অনুষ্ঠান। এছাড়া নজরুল মঞ্চেও উপস্থিত রয়েছেন বহু শিল্পী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। নিষ্ঠা ও একাগ্রতায় উত্তম কুমার শুধু মহানায়ক নন, ক্ষুদ্রতার গণ্ডি ছাড়িয়ে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে শক্তি সিং। भारत और बेल्जियम ने आज व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला एक देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनाने में मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा क्षेत्र में भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने कहा कि देश 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का आंकड़ा पार कर चुका है, जो वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य की ओर देश की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गुजरात के अहमदाबाद में भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2026 के अंतर्गत आयोजित एक रोड शो में श्री नाइक ने ये बात कही। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण बुनियादी ढांचा, ऊर्जा भंडारण, हरित विनिर्माण और अभिनव वित्त पोषण को शामिल करते हुए एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता का उल्लेख किया। झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित दो दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वोटर रजिस्ट्रेशन एंड वोटर रजिस्टर्ड 2026 आज रांची के NUSRL में संपन्न हुआ। समापन सत्र में NUSRL के कुलपति प्रोफेसर अशोक आर पाटिल ने कहा कि सटीक और समावेशी मतदाता सूची लोकतांत्रिक भागीदारी की बुनियाद है और चुनाव की शुचिता और समावेशन

0: दोस्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड फ्यूअल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
1: भारत और बेल्जियम दोनों ही रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया।
1: इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को भी नई मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
3: For way beyond this region.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता के सफल

0: हमले की निंदा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने नियमित आदान प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा औद्योगिक साझेदारी के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। भारत ने ब्रसेल्स में डिफेंस अटैशे नियुक्त करने का फैसला किया है। बेल्जियम ने इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में डिफेंस अटैशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर श्री जॉर्ज ने कहा कि उसे पिछले साल अप्रैल में बेल्जियम के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और तब से वो बेल्जियम की जेल में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे।
2: मेकिंग इंडिया $30 trillion इकोनॉमी।
3: भारत 2047 तक $30 trillion की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साहजनक है और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के इस दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
2: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। श्री जयशंकर ने यूक्रेन के कीव में वहां के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से मुलाकात के बाद ये बात कही। श्री जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराया। श्री मोदी ने कहा था कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करना होगा। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए भारत की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। बाद में विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की सचिव एलेनोर जेन लॉसन से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4,216 लोग अब भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। तेज बारिश के कारण जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंदौली में आज स्कूल बंद रहे। इस बीच मौसम विभाग ने कल मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा

0: चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तेज बारिश का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। सरकार ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को एक साथ लाने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अनाहत सिंह लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की नील गिलस को 2-1 से हराया। किदांबी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव की जोड़ी को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन कल जन्माष्टमी के भव्य उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि में तैयारियां जोरों पर हैं। मथुरा में पहली बार कल जन्माष्टमी के मौके पर 500 द्रोण आकाश में भगवान कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत रूप से प्रदर्शित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जन्माष्टमी समारोह में भाग लेने के लिए मथुरा पहुँच चुके हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने आज श्री स्वामी हरिदास सभागार का उद्घाटन किया और 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि श्रीमद् भगवद् गीता में दी गई श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी कठिन समय में सही निर्णय लेने और नैतिक मूल्यों पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देती हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
4: सेंसेक्स 417 अंक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 49 पैसे मजबूत होकर 94.49 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में MSME के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख दा वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर सफलतापूर्वक वार्ता पूरी होने का स्वागत किया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहां

0: आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
1: वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेल्जियम की रक्षा कंपनियों से भारत की विनिर्माण क्षमता के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़कर संयुक्त रूप से रक्षा उपकरण विकसित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में भारत बेल्जियम रक्षा सीईओ बैठक में उन्होंने साइबर सुरक्षा, एआई आधारित ड्रोन, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रांकेन ने भी दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं हो सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉक्टर जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का स्वागत किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए आज 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में हांगकांग के सामने 194 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and Belgium today reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgian counterpart, Bart De Wever, welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense manufacturing, critical minerals, renewable energy, ports, logistics, space, and advanced technologies. India and Belgium today exchanged several agreements including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes including cybercrime and diplomatic training. In his press statement, Prime Minister Modi emphasised that India's economy has maintained its momentum even in this challenging environment. He said in the last quarter, India recorded a growth of 7.8%. He further said that today, India's growth story is becoming a source of confidence and new opportunities for the world. He highlighted that the scope of bilateral cooperation has expanded beyond

কথা কয় খেলা ন।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेल्जियम की रक्षा कंपनियों से भारत की विनिर्माण क्षमता के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़कर संयुक्त रूप से रक्षा उपकरण विकसित करने और बनाने का आग्रह किया। नई

0: में भारत बेल्जियम रक्षा मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोलमेज बैठक में उन्होंने साइबर सुरक्षा, एआई आधारित ड्रोन, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉक्टर जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पात्र संस्थानों से विश्वास 2026 योजना के तहत लंबे समय से लंबित ईपीएफ बकाया विवादों को कम दर पर निपटाने की अपील की है। यह एक मुश्त निपटान योजना है जिसमें नियोक्ता कम जुर्माना देकर पुराने विवादों का समाधान कर सकते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना 28 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी और इसकी अंतिम तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकारी ई मार्केटप्लेस और टेक्सटाइल कमेटी ने पुनर्चक्रित और दोबारा इस्तेमाल किए गए कपड़ा उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के तहत कपड़ा कचरे, कतरनों और पुराने कपड़ों से बने उत्पादों को सरकारी ई मार्केटप्लेस के जरिए सरकारी खरीदारों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स स्मार्ट स्पोर्ट्स स्पेशलिटी अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि नए भवन से सेवाओं का विस्तार होगा और अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 64 गेंदों में 124 रन बनाए। भारत ने अपने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया था। देशभर में आज हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart Bart De Wever welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense manufacturing, critical minerals, renewable energy, ports, logistics, space and advanced technologies. India and Belgium exchanged several agreements, including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes, including cybercrime and diplomatic training. In his press statement yesterday, Prime Minister Modi emphasised that India's economy has maintained its momentum even in this challenging environment. He said in the last quarter, India recorded a growth of 7.8%. He further said that today, India's growth story is becoming a source of confidence and new opportunities for the world. He highlighted that the scope of bilateral cooperation has expanded beyond traditional sectors to reach strategic areas such as defense and clean energy.
2: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है।
1: Foreign Secretary Vikram Misri yesterday hosted the Quad Sherpas meeting in New Delhi. In a social media post, the External Affairs Ministry said that the meeting reviewed progress across key pillars including maritime security, economic prosperity, critical and emerging technologies, and humanitarian assistance and disaster relief. During the meeting, the Sherpas welcomed the strong momentum in Quad interactions and practical activities. They also discussed potential new initiatives for announcement at the next Quad Foreign Ministers meeting. The meeting was attended by U.S. Ambassador to Indigo, Sergio Gore, Australian Secretary of the Strategic Planning and Coordination Group in the Department of Foreign Affairs and Trade, Eleanor Jane Lawson, and Japanese Senior Deputy Minister for Foreign Affairs, Hiroyuki Namazu. Government E-Marketplace, GEM and Textiles Committee have signed Memorandum of Understanding, MOU, to boost procurement of recycled and upcycled textiles. The initiative will promote recycled and upcycled products made from pre- and post-consumer textile waste, scrap and second-hand clothes through public procurement, creating new market opportunities for enterprises in the circular textile economy. Ministry of Commerce and Industry said that MOU will create a waste-to-value-to-market ecosystem, enabling textile waste, scrap and second-hand clothes to be transformed into quality, value-added products and made available to government buyers through GEM. President Draupadi Murmu has extended greetings to the citizens on the eve of Janmashtami. In her message, the president said that the life and teachings of Lord Krishna breathe a new life into cultural and philosophical heritage of India. Meanwhile, the city of Lord Krishna, Mathura Vrindavan, is decked up for the grand celebration today on the occasion of Janmashtami. According to our correspondent, preparations are in full swing at Mathura Vrindavan ahead of Janmashtami, with over 5 lakh devotees expected to visit the city. In women's cricket, India stormed into the semi-final of the 2020 Asia Cup, defeating Hong Kong by 137 runs in their second Group A match at Dubai International Stadium in UAE. Chasing 194 for victory, Hong Kong were bundled out for just 56 runs in 16.2 overs. Earlier put into bat, Indian Eves posted 193 for 5 in stipulated 20 overs. Smriti Mandana shattered multiple world records with a breathtaking 124 of 64 balls. And that is the end of this news bulletin.